एफएम 16.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद

0: प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
2: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन।
4: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है विचार बिंदु। इसमें सुनिए आध्यात्म पथ विषय पर विचार।
5: आध्यात्म पथ पर चलने का अर्थ संसार से पलायन नहीं है, यह अपने को दूसरों से अलग कर लेना और कुछ विचारों के घेरे में बंद कर लेना नहीं है। वास्तव में यह संसार और उसकी टेढ़ी मेढ़ी चालों का ज्ञान है। यह संसार हमें रोटी, कपड़ा, मकान और कुछ ऐसे सुख देता है जिनका अंत दुखयुक्त होता है। हमारे लिए इन सब का ज्ञान अनिवार्य है। ज्ञान सब प्रकार के दुखों के कारण का ही निराकरण कर देता है। आध्यात्म का मार्ग इस मायावी संसार से परे नहीं, इससे होकर ही गुजरता है।

0: साधक को तो इससे रहकर भी इससे अछूता रहना है। यह संसार और उसके आमोद प्रमोदों का निराशापूर्वक त्याग नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण अवलोकन द्वारा उनका हमसे छूट जाना है। हम बलपूर्वक संसार को अपने हृदय से निकाल नहीं सकते, और यदि हम ऐसा करते हैं तो एक भयंकर प्रतिक्रिया के साथ यह पुनः लौट आएगा। हमें इसकी निरर्थकता को जानना होगा, ताकि पके हुए फल की तरह यह हमारे हृदय से ही गिर जाए। आध्यात्म किसी पवित्र शब्द अथवा गुप्त मंत्र को दोहराना नहीं है, न यह देव दर्शन है, न यह दिव्य ज्योति को देखना है, न यह किसी नाथ का श्रवण है, और न यह भीतर और बाहर मौन धारण करना मात्र है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने मन की समस्त टेढ़ी मेढ़ी चालों, लालसाओं और क्रोध लोभ के प्रति सदैव जागृत रहता है। आध्यात्म मात्र उपलब्धि अथवा अनुभूति नहीं जागृत करता, यह चेतना के प्रचंड प्रकाश को अपने मन की ओर मोड़ना है और मन की अच्छी बुरी कामनाओं के प्रति जागना है। यह पहचान करना है कि हम इन सब से अछूते रहते हैं। मन को बलपूर्वक चुप नहीं कराया जा सकता, और न ही उसे जबरदस्ती एकाग्र किया जा सकता है। इसे तो पहले आत्मशिक्षण तथा विषय, व्यक्ति, स्थान आदि की निरर्थकता के ज्ञान द्वारा राग द्वेष से मुक्त करना होगा, और तब ध्यान द्वारा संकल्प विकल्प से आत्मा की पृथकता की अनुभूति करनी होगी। सामान्यतया हम कार्य को हटाने के प्रयत्न में ही अपना समय नष्ट करते हैं, और इस तथ्य को भूले रहते हैं कि यदि कारण विद्यमान है तो उसके अनुरूप कार्य का प्रकट होना अवश्यंभावी है। कार्य दूसरे रूप में कारण के सिवा कुछ नहीं है। कारण के प्रति जागृति और उसके निवारण के लिए प्रयत्नशील रहना ही आध्यात्म पथ पर अग्रसर होना है।
1: विचार बिंदु में अभी आपने आध्यात्म पथ विषय पर विचार सुने, और आइए अब आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हे प्रथम पूज्य, हे सुखकर्ता, हे मंगलकारी, हे दुखहर्ता, हे रिद्धि सिद्धि विनायक, हे लंबोदर, हे अष्ट विनायक, हे गौरी नंदन देव सहायक, सदा तुम्हारा अभिनंदन। आइए आराधना की शुरुआत करते हैं हरिओम शरण के गाए इस गणेश वंदन से।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह का गाया एक राम भजन। रोम रोम में बसे हैं राम, हर सांस में उनकी आस, जीवन का आधार है राम, सत्य की साकार है राम। राम नाम जो हृदय बसाए, भव सागर से पार हो जाए।

आराधना की अगली भक्ति रचना अलोक जलोटा के स्वर में। मेरी तो हर श्वास में तू, भक्ति के हर रंग में तू, मेरा तन मन रंगा है तुझमें, जग से मेरा कोई न मोह। तू ही आरंभ तू ही अनंत, तेरा सुमिरन मन का संत, मन में नहीं कोई कामना, मेरा तू स्पंदन तू।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में अगला भजन। जय जय माँ अम्बे भवानी, करुणा ममता शक्ति की कहानी, ज्ञान साहस समृद्धि की मूरत, कृपा की है तू सूरत, भक्तों का तू है सहारा, भर देती जीवन में उजियारा।

आइए आराधना का समापन करते हैं गिरिजा देवी की गाई संत मीराबाई की भक्ति रचना से। नैनों में बसी मूरत तेरी, तुझसे ही लगी प्रीत मेरी। तुम बिन कोई नहीं सहारा, तू ही मेरा जीवन आधारा। जग से नहीं कोई अभिलाषा, प्रेम की मैं बनी परिभाषा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रेम भाव से भरे हैं सागर।

विदुषी गिरिजा देवी की गाई संत मीराबाई की सी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए अब करते हैं आज की बात। आज की बात के साथ मैं माधुरी कैड़ा, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज है 3 जून। जानते हैं इतिहास के पन्नों पर क्या कुछ खास दर्ज है आज की तारीख में। श्रोताओं, 3 जून 1867 को अजमेर राजस्थान में जन्मे एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक हरविलास शारदा ने सामाजिक क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये आर्य समाज का पालन करते थे। इनके अप्रतिम प्रयासों से ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 शारदा एक्ट अस्तित्व में आया, जिसे 1 अप्रैल 1930 में पूरे देश में लागू किया गया। राय बहादुर और दीवान बहादुर जैसी उपाधियों से अलंकृत शारदा ने हिंदू सुपीरियरिटी, महाराजा कुंभा, महाराजा सांगा, शंकराचार्य और दयानंद,

और लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, भारतीय राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को मद्रास में हुआ था। ये तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपने 60 साल के राजनीतिक करियर में अपनी भागीदारी वाले हर चुनाव में अपनी सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। एम करुणानिधि तमिल सिनेमा के एक नाटककार और पटकथा लेखक भी थे। उनके समर्थक उन्हें कलाई नार यानी कि कला का विद्वान कहते थे। एम करुणानिधि ने 94 वर्ष की उम्र में 7 अगस्त 2018 को देह त्याग दिया। आज ही के दिन 1930 में जन्म हुआ था एक भारतीय राजनेता जॉर्ज फर्नांडिस का। वे श्रमिक संगठन के भूतपूर्व नेता और पत्रकार थे। वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। उन्होंने समता मंच की स्थापना की। वे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री रहे। उन्हें 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। श्रोताओं, सुप्रीम कोर्ट के पूरे इतिहास में न्यायाधीश बनने वाली तीसरी महिला रूमा पाल का जन्म 3 जून 1941 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। न्यायमूर्ति पाल 1990 में कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। एक जज के रूप में उनका व्यवहार अनुकरणीय माना जाता है। उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता उन्हें भारतीय न्यायपालिका में बहुत अलग और सम्मानीय स्थान प्रदान करती है। 3 जून 1918 को हिंदी साहित्य सम्मेलन भारतीय भाषा आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यही वो अवसर था जब हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव उस समय प्रतीक बन गया जब भारत में भाषाई अस्मिता का प्रश्न स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ने लगा था। श्रोताओं, इस निर्णय से हिंदी आंदोलन को एक नई दिशा और राष्ट्रीय समर्थन मिला। आगे चलकर ये विचार भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान भी गूंजता रहा और 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है देशकांड।

एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। जानकारियों की विविध रंगों से सजे कार्यक्रम विविधा में आज आपके साथ हूँ मैं माधुरी गैड़ा। सभी सुनने वालों को मेरा स्नेहिल अभिवादन। जिसने भी किया सेहत से प्यार, जिसने भी किया सेहत से प्यार, बदले में मिली खुशियां अपार। जी हाँ दोस्तों, अगर सेहत अच्छी नहीं तो दुनिया की सारी खुशियों का कोई मोल नहीं। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लाखों उपाय करता है। योग अपनाता है, पैदल चलने का महत्व समझता है, व्यायाम से रिश्ता जोड़ता है, भोजन में सादगी अपनाता है और साथ ही साइकिल जैसे छोटे वाहन को अपना पक्का मित्र बनाता है। और इसीलिए इसकी महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना, 2026 की ये थीम इंगित करती है लोगों की फिटनेस, दैनिक यात्रा, प्रदूषण कम करने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, ये दिवस हम 2018 से मनाते आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए साइकिल चलाने के अनगिनत लाभों को देखते हुए इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। साइकिल चलाने से हमारे शरीर का व्यायाम तो होता ही है, साथ ही ये चलाने में आसान है, किफायती है, विश्वसनीय है और पर्यावरण के अनुकूल है। किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता, स्थान भी कम घेरता है। दोस्तों, विश्व के सतत विकास के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में साइकिलिंग को मुख्यधारा में शामिल करने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में पारित एक नए प्रस्ताव ने इसके लाभों को और भी मजबूत किया है।

इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकारें समाज के सभी सदस्यों, जिनमें सभी आयु वर्ग के शहरी और ग्रामीण लोग शामिल हैं, के बीच साइकिल को बढ़ावा देने और समाज में साइकिलिंग की संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये माना जाता है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक, कुछ तरह की कैंसर और असामयिक मृत्यु के जोखिम को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। बदलते समय के साथ साइकिलिंग भी बदली है। भले ही आज हम इसे एक्सरसाइज के तौर पर अधिक उपयोग करते हैं, लेकिन 1960 से लेकर 1990 तक ये परिवार में एक साधन का हिस्सा माना जाता था। चलो आज साइकिल से सैर पर चलते हैं। चलो आज साइकिल से सैर पर चलते हैं, ताजी हवाओं के झोंकों में कुछ गुफ्तगु करते हैं। आज की विविधा में बस इतना ही। अगली बार जानकारी का एक नया रंग लेकर फिर हाजिर होंगे। इसी वादे के साथ माधुरी का नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: एभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति। ये खलु स्वमूल्याङ्कितानाम् उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचितमार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविदसमितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्टपञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं 6 क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि

विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और

0: अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और 9:30 पर चर्चा का विषय, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 10:30 पर, साय 6:30 पर और गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे 6:50 पर और कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 7:30 पर। ये सभी समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि प्रातः 7:10 पर श्री रामचरित मानस से 113वां प्रसंग प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय रहता है प्रातः 8:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का राग ललित में गाया ख्याल। घर संसार कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 12:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे साइकिलिंग सेहत भी पर्यावरण संरक्षण भी, इस विषय पर भरत शाह उत्तराखंड साइकिलिस्ट अल्मोड़ा से की गई गीता कनवाल की क्षेत्र संकलित बातचीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1298 कड़ी आप सुन सकते हैं दोपहर 1:30 पर और 2:30 का समय रहता है किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे डॉक्टर रिपुसूदन कुमार की जानकारी, गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल। साय 5:15 पर हमारे युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज के बाद का विषय रहेगा विश्व साइकिल दिवस और साथ ही लेकर आएंगे साइंस का संसार और आज का इतिहास। ग्रामीण श्रोताओं के लिए उत्तरायण कार्यक्रम के प्रसारण का समय रहेगा 5:45। इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे विश्व साइकिल दिवस विषय पर और ग्राम जगत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:00। इस कार्यक्रम में आज की बातें का विषय रहेगा गर्मियों में पशुधन सुरक्षा और साथ ही आपसे चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ विषय पर। कुछ भक्ति रचनाएं लेकर आएंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम में 6:41 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और हरिओम शरण की गाई भक्ति रचनाएं। लोक गाथा नल दमयंती का अंतिम भाग प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:00। कुमाऊनी लोकगीत आप सुन सकते हैं लोक मंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर। हमारे आज के गायक कलाकार होंगे भूपेंद्र भौरियाल और शैलस्वर कार्यक्रम में 5:05 पर आज हम आपको सुनवाएंगे देवेश चंद्र और साथियों का गाया कुमाऊनी लोकगीत। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकसुर के प्रसारण का समय रहेगा प्रातः 11:30। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दोपहर 2:00। मिले जुले गीतों और गजलों के कार्यक्रम सबरंग का आनंद लीजिएगा प्रातः 10:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर और रात्रि 10:00। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में प्रातः 9:05 पर। सुरबाहर कार्यक्रम के तहत प्रातः 10:35 पर। आज इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे शीर्षक गीत, हमारा आज का शीर्षक होगा साथ। सैनिक भाई फिल्म संगीत का आनंद लेंगे सैनिकों के लिए कार्यक्रम में प्रातः 11:00। 12:00 का समय रहता है मेरी पसंद का, एक ही फनकार आप सुनेंगे अपराह्न 2:45 पर। और 3:00 आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। फिल्म संगीत साय 7:40 पर और रात्रि 10:30 पर। इंद्रधनुष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से 113वां प्रसंग।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार

देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

अभी आपने श्री रामचरितमानस से 113वां प्रसंग सुना। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुशांत सकलानी। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने कहा, कुंभ मेला 2027 में यातायात एवं भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवहारिक रणनीति तैयार की जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के खिड़सू एवं पावो में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बच्चों से तकनीकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक क्षेत्रों में रुचि विकसित करने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा देश भर में उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में जुटी है। उत्तराखंड में भी भाजपा के मंत्री केंद्र सरकार के कार्यालय को विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित बता रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है और अनेक ऐतिहासिक फैसलों के जरिए देश को नई दिशा मिली। श्री कैड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण,

0: कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचा है, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भी केंद्र सरकार से विशेष सहयोग मिला है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, सीमांत क्षेत्रों के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक में मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि मेला प्रशासन कुंभ मेले को ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में भीड़ से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक, डिजिटल मॉनिटरिंग, सीसीटीवी नेटवर्क एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से प्रभावी व्यवस्था विकसित की जा रही है। साथ ही स्थानीय नागरिकों, व्यापारिक संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं के सुझावों के आधार पर यातायात एवं भीड़ नियंत्रण की व्यवहारिक रणनीति तैयार की जाएगी। मेलाधिकारी ने कहा कि मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुविधाजनक और सकारात्मक अनुभव प्रदान करने के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए।
1: हमारी ये जो मीटिंग है जिसमें कि हम सभी से परामर्श लेते हैं, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है इस समय में, तो सभी को हम लोग मोर और लेस 2 या 3 महीने के अंतराल में हम सब लोग बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं कि जो काम चल रहे हैं वो किस तरह से उनकी प्रोग्रेस, बाकी चीज़ें बताई जाती हैं और साथ में कोई और सुझाव हो, ऑब्जर्वेशन हो, वो भी हम लोग लेते हैं। तो आज उसी पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पार्किंग होनी चाहिए और क्या क्या कार्य होने चाहिए, सभी पर डिस्कशन। बेसिकली क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो कंजेशन और जो चोकिंग होती है उस पर डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और किस तरह से वहाँ पे जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, उसको और अच्छा किया।
0: नैनीताल जिले के भवाली स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 79 यूके बटालियन ने 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक आवासीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। एनसीसी के कर्नल अभिजीत मेहता ने के नेतृत्व में 2 से 11 जून तक आयोजित होने वाले इस 10 दिवसीय शिविर में जिले के विभिन्न स्कूलों के 600 कैडेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। श्री मेहता ने बताया कि अगले 10 दिनों में कैडेट शारीरिक प्रशिक्षण, सैन्य कौशल और व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रमों के साथ ही सभी कैडेटों को ड्रोन संचालन और सैन्य विमानन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF द्वारा कैडेटों को युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं जो कैडेट भविष्य में भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा द्वारा एक विशेष इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के बड़कोट उत्तरकाशी के पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायालय ने इस मामले में शिकायतकर्ता प्रवीण रावत को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सर्विस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तय की गई।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्रीनगर के खिरसू एवं पावो क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। डॉ. रावत ने खिरसू के ग्राम उल्ली में पर्यटकों की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृत लागत से निर्मित होने वाले यात्री प्रतीक्षालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ आगंतुकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक होंगी। थानधार उल्ली मोटर मार्ग का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के बनने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। इस दौरान डॉ. रावत ने खिरसू मांडाखाल मोटर मार्ग के मध्य बिडोली मोटर मार्ग पर यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित व्यू पॉइंट का भी लोकार्पण किया। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र

0: के समग्र विकास, जन सुविधाओं के विकास के विस्तार एवं पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की दिशा में प्रयास तेज हो गए। इस संबंध में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि टिहरी जिले के मदन नेगी और नरेंद्र नगर में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है और घनसाली क्षेत्र में भी जनप्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल खोलने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
1: केवी की, जैसे कि हर ब्लॉक में केवी खुलने की मांग है और हमारा मदन नेगी और नरेंद्र नगर के प्रस्ताव काफी आगे बढ़ गए। मदन नेगी तो स्वीकृत हो चुका है, वैसे ही घनसाली के लोगों में भी एक मांग है और हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। केवी के जो प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लिए, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है जमीन की, उस सबको हम देख रहे हैं और हम देखेंगे कि कहां बेहतर हमें जमीन मिल सकती है, किस तरीके से कहां उचित जगह खोल सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ हो। तो उसके लिए एक बैठक आज की गई है और मुझे लगता है हम इसमें आगे त्वरित कार्रवाई करें।
0: उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि उपलब्धता, छात्र संख्या और अन्य आवश्यक मानकों से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी के लिए प्रधानाचार्य प्रदीप चंद्र थपलियाल ने कहा कि घनसाली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होने से क्षेत्र के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
2: घनसाली में केंद्रीय विद्यालय खुलने के संबंध में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और जिलाधिकारी महोदया द्वारा शिक्षा विभाग, जो वहां शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि डीओ बेसिक और बीओ सर वहां पे आ रखे थे, उनसे ये लिया गया। देखो, जो मानक है, मानक के अनुसार तो वहां पे भूमि उपलब्ध है, रोड उपलब्ध है, बिजली है, पानी है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानक हैं। 2.5 एकड़ वहाँ पे जमीन, 2.5 एकड़ से ज़्यादा ही है जमीन उपलब्ध है। तो अंतिम अब ये रह गया है उसमें, जो वो है जिलाधिकारी महोदया द्वारा शिक्षा विभाग को के प्रतिनिधियों को ये निर्देश दिए गए कि आप अभिभावक संघ से और विभिन्न अभिभावकों से विचार विमर्श कर उसमें सहमति ले ताकि जो ये प्रस्ताव है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय भेजा जा सके।
0: राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन नैनीताल में SOS बाल ग्राम भीमताल के बच्चों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। उन्होंने बच्चों से तकनीक एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक क्षेत्रों में रुचि विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने SOS बाल ग्राम के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्था बच्चों को शिक्षा, संस्कार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता का बेहतर वातावरण उपलब्ध करा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने कहा, कुंभ मेला 2027 में यातायात एवं भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवहारिक रणनीति तैयार की जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के खिरसू एवं पाबो में विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बच्चों से तकनीक एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक क्षेत्रों में रुचि विकसित करने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वा 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का यह अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हमारे आज के गायक कलाकार हैं भूपेंद्र भौरियाल।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी, और हमारे आज के गायक कलाकार हैं भूपेंद्र भौरियाल।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: इस समय आप सुन रहे हैं भूपेंद्र भौरियाल के गायक कुमावनी लोकगीत।

भूपेंद्र भौरियाल के गाए इसी कुमावनी लोकगीत के साथ लोक मंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: दाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवान्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजाति

0: कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य प्रश्न।

0: पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the

अभी आपने पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र से राग ललित में गाया ख्याल सुना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू किया जाएगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र

का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी करेंगी। इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा।

0: आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। तीसरा और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर।

दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में दुखों, गमों, निराशाओं के भावों का आना बेहद स्वाभाविक है। बस इन लम्हों में धैर्य का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये गम स्थायी नहीं होते। एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब जिंदगी में आने वाले हसीन पल इन नकारात्मक यादों को कोसों पीछे छोड़ देते हैं और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। और इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं आपकी फरमाइशी गीतों के साथ गीत निर्झर कार्यक्रम में। सभी श्रोता दोस्तों को आपकी दोस्त माधुरी गैड़ा का स्नेहिल अभिवादन।

आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दो रास्ते फिल्म के गीत से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, आनंद बख्शी का लिखा गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया है। इस गीत को हमने आप सभी के नाम किया है। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झारावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन नैना, सत्यनारायण कपिल, शोभा, श्रीमती फुनदी बाई बागरी। जवाहर नगर दुर्ग से हमारे श्रोता आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। नेहरू चौक पैठण से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव।

बोट, निकल कांगड़ा और तन्वी बोट। इसी गीत की फरमाइश हमारी है इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी, डॉक्टर सना और डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी की। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमारे श्रोता हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी, शबनम बानू। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, मालती चौधरी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवार, कमला रानी भानुप्रकाश, गीतिका खोरवार और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका, कुमारी अंकिता और अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट जी। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए पेश है सन्यासी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में गाया हुआ। विश्वेश्वर शर्मा ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरे हमदम मेरे दोस्त, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी श्रोता। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशो, सुषमा सुरेशो, परिधि मायरा सुरेशो। इसी गीत की फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। माल टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे और श्रद्धा ढेकरे। इसी गीत को सुनना चाहा है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल ने। ऊपर कोट मोहल्ला चौकुनिटी बुलंदशहर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी लोग। बूढ़ चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल

सिंह राशिका सिंह आकृति और वंशराज सिंह कस्बा गुन्नौर से, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरीन, फारिया और ताहिरा बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन सरगुजा मेनपाट से, नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी और प्रकाश वीर राजपूत डोंडी लोहारा बालोद से, कमलेश जयपुरिया खंडवा से, पिंकी और रिंकी जेल रोड रायगढ़ से हैं, लालचंद मिश्रा, रमेश चंद्र और कुमकुम मिश्रा एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना और रचिता खुराना। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद आपकी नजर।

अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम है गीत निर्झर। लीजिए अगली पेशकश मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और पसंद करता है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। और इसी गीत की फरमाइश शेरवानी स्कूल गंज टंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से हैं अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद, फारूक फूलवाले, सैयद खलील, मूसा करीम, शेख सलीम। और इसी गीत की फरमाइश टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटके हैं रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। मनाली हिमाचल से हमारे श्रोता हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश, अनीजा। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। इसी गीत की फरमाइश दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की आई है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण और कलावती सोनी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। सल्लार पहलगांव कश्मीर से हैं पीरजादा मिराज उद्दीन। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नशरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और इनके बहुत सारे साथी। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। और जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। और इसी गीत की फरमाइश कर कनेरा मोहल्ला पटियाला पंजाब से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता की। सनावत से अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना और इसी गीत की फरमाइश। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा की। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। सहेली रेडियो श्रोता संघ आज़ाद रोड सनावत से हैं बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा और मोहम्मद सगर खत्री। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से हैं। आप सभी की पसंद पर लीजिए पेश है लता मंगेशकर और यशुदास का गाया, साहिल उद्यानवी का लिखा, खयाम का संगीतबद्ध किया, त्रिशूल फिल्म का गीत।

गीत निर्झर कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया राजकुमार फिल्म का गीत। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। वडिंग खेड़ा मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा हैं पंजाब से। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, माधुरी किरण। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कुलवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास, कोरवी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमू और मानस राज। इसी गीत की फरमाइश भिलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जेशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी की और पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर जिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति पौरुष हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और इसी गीत की फरमाइश टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर छाबड़ा और इनके साथियों की। बोरसड़ा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशी साहू, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। हमारे ये श्रोता हैं ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से। मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगेना बरेली उत्तर प्रदेश से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नी लाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PL नवहारकर, निर्मला नवहारकर, विशाल सोपान ताइडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चिया, आशीष मुरहेकर। तो लीजिए पेश आपकी पसंद पर राजकुमार फिल्म का गीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए राजकुमार फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए पेश है सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गीत फिल्म का नगमा। प्रेम धवन के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने और पसंद करता है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई महेश संघई प्रगेश और प्रतेश संघई। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर शाहजी बोटखे श्रीमती नंदा बोटखे हनुमान बोटखे उत्तम जमदाड़े हिंडोली महाराष्ट्र से हैं। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय श्रीमती रोशनी रॉय प्रांजल रॉय कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय श्रीमती उषा रॉय अमित कुमार हैप्पी रॉय शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश रॉय श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय बंगाली पंजा नागपुर से हैं। प्रकाश रंभाड़े भारती रंभाड़े जानवी रंभाड़े काशी निवास नागपुर से हर्षल रंभाड़े और वैष्णवी रंभाड़े।

आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं बॉबी फिल्म के गीत से। गायक कलाकार हैं शैलेंद्र सिंह, बोल आनंद बख्शी की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनु साबरी, मुदस्सिर मुजक्किर, जरीफ अंसारी और ताजपुर मोरवा मस्ता मस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हिंगोली महाराष्ट्र से और दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय।

सैलिन सिंह के गाए बॉबी फिल्म के इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्में गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर से माधुरी कैड़ा को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना

स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पूर्व में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर

0: विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सब रंग।

0: सबरंग कार्यक्रम की शुरुआत में आपने तलत अजीज को सुना, शायर थे मसरूर अनवर।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए अब सुनते हैं बशीर बद्र का कलाम, फनकार हैं जगजीत सिंह।

0: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: जागो ग्राहक जागो।
3: सब रंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मुन्नी बेगम की आवाज में मोहसिन भोपाली का कलाम।

अभी आपने सलमा आगा से गौहर कानपुरी का कलाम सुना। इसी के साथ मिले जुले गीतों और गजलों का एक कार्यक्रम सबरंग अब यहीं पर संपन्न हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सवरण FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का यह अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुशांत सकलानी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच सुशासन, जनकल्याण और राज्यों के विकास से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्यों के मध्य श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और अनुभवों का आदान प्रदान विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने देवनानी से उत्तराखंड में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन गतिविधियों, चारधाम यात्रा और जनकल्याण योजनाओं की जानकारी साझा की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उत्तराखंड सरकार के विकास एवं जनसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने नैनीताल जिले के ओखलकांडा विकास खंड की ग्राम सभा हेड़ा खान क्षेत्र में गौला नदी पर 1,21,00,000 रुपए की लागत से निर्मित पैदल पुल का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री कैड़ा ने कहा कि पुल बनने से क्षेत्र के लोगों के साथ ही छात्रों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत उद्धम सिंह नगर जिले के किच्छा में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जनता की शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान करें। वहीं पूर्व विधायक किच्छा राजेश शुक्ला ने कहा कि सरकार का मकसद जनता की समस्याओं का जनता के बीच जाकर समाधान करना है, जिसके लिए सरकार ने तमाम कार्यक्रम चलाए हैं। केंद्र सरकार की ओर से वाइब्रेंट विलेज फेज 2 में सीमांत जिले पिथौरागढ़ के 24 और गांवों का चयन किया गया। इसके साथ ही जिले में वाइब्रेंट विलेज की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। पिथौरागढ़ जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पहले चरण में जिले के कुल 27 गांव चयनित किए गए थे। पहले चयनित गांवों में 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 16 लाइटें लगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले चयनित वाइब्रेंट विलेज गांव में 16 करोड़ से अधिक रुपए से सामुदायिक हॉल, पुलिया, ट्रैकिंग मार्ग समेत आधारभूत अवस्थापना के कार्य किए जा रहे हैं। श्री सैनी ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज के दूसरे चरण में चयनित गांवों में विकास कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही सभी चयनित नए गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मॉनसून सीजन एवं चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग मॉनसून शुरू होने से पूर्व अपनी तैयारियां पूर्ण कर लें, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना ना करना पड़े। जिलाधिकारी ने

0: जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि यात्रा मार्ग पर स्थित सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध रहे, जिससे यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में भी आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की तैयारियां तेज कर दी। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मौसम की चुनौतियों के बावजूद धामों में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 29,85,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन के जोशी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और सुविधाजनक परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान प्रोफेसर जोशी ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओं के संचालन तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, सकारात्मक और तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुरबहार।

सफर में मुश्किलें थीं, रास्ते भी थे खफा, मगर वो चलते रहे मेरे साथ साथ। और आज के सुरबहार के सफर में साथ साथ होंगे मैं और मेरे अजीज श्रोता दोस्त। आज के शीर्षक गीत के तहत पेश है शीर्षक साथ। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माधुरी केड़ा, सभी को मेरा स्नेही अभिवादन। एक छोटा सा शब्द साथ मजबूती को बयां कर जाता है, दो कदमों का साथ जिंदगी को आसान बना जाता है, तेरा साथ ही बहुत है जीने के लिए, परायों से मुझे मतलब नहीं।

साथ रहने से ही तो मोहब्बत होती है, बिछड़ कर तो बस यादें ही साथ रह जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, किसी अजीज का साथ अनमोल है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो सुकून, सहारा और विश्वास है जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में संबल देता है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरबहार, और सुरबहार में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शीर्षक गीत। हमारा शीर्षक है साथ। दोस्तों, किसी का साथ ही तो है जो हमें खुशियों से भरता है। अपनों का साथ हमें नई ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत देता है। एक सच्चा साथी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुकून लाता है, हमें उदासीनता की ओर जाने से रोक लेता है। एक तेरा साथ मुझे हर कदम पर चाहिए, प्यार के दो बोल तेरे हर हालात पर चाहिए।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दोस्तों, साथ में बहुत शक्ति होती है। यो भाव होता है जो मुश्किल वक्त को बिताने का सहारा बनता है, कठिन से कठिन कामों को सरलता से अंजाम देने का साहस रखता है। वो साथ ही तो है जो प्रेम, विश्वास और एकता को बांधे रखता है। साथ कुछ भी कर पाने का आत्मविश्वास बनाए रखता है। सफर आसान नहीं होता, मगर हौसला रहता है जब किसी अपने का हर मोड़ पर साथ रहता है।

जिंदगी में ये एहसास कि कोई अपना मेरे साथ है जीने का हौसला बढ़ा देता है, बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसानियों में बदल देता है। इसलिए छोटी छोटी नाराजगियों को गांठ बांधकर दिल से लगा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक सच्चे भावों से भरा साथ खुशकिस्मत वालों को ही हासिल होता है। तेरा ख्याल तेरी हिफाजत, तेरी खुशियाँ ही मेरा मकसद है, तेरी आँखें अगर छलक पड़े तो नाकाम मेरी कोशिशें रहीं।

आज के सुरबहार में आपका और मेरा साथ बस यहीं तक। आज के कार्यक्रम में आपने प्यासा सावन, ताल, फना, मंगल दादा और मेरा साया फिल्मों के गीत सुने। आवाजें थी लता मंगेशकर, ए हरिहरन, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान, काजोल और मनहर के। अगली बार फिर एक नए सोच नए विषय के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अभी दीजिए माधुरी कैड़ा को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने शहीद फिल्म से सुना। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथी। राम प्रसाद बिस्मिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रेम धवन ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने शहीद फिल्म से सुना। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथी। राम प्रसाद बिस्मिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रेम धवन ने। अब हम आपको सुना रहे हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाजों में फाइज अनवर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

एक दूजे के लिए फिल्म केस गीत के बाद लीजिए पेश है उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और आनंद मिलिंद का संगीत बद्ध किया। कयामत से कयामत तक फिल्म का गीत।

अभी आपने दिल तो पागल है फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की, बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी उत्तम सिंह ने। और सैनिक भाइयों, आइए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की गाये कारोबार फिल्म गीत से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने।

अलका याग्निकर, उदित नारायण के गायक कारोबार फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकसुर।

0: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: और अब लीजिए सुनिए रमेश जोशी और भाषा पंत के युगल स्वरों में कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोता अभी सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के बजे हैं 12। हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार, और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है मेरी पसंद में। श्रोताओं, कहते हैं ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में घूमना फिरना कितना ज़रूरी है। यदि हम सच में ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहते हैं तो हमें तरह तरह के लोगों से मिलना, तरह तरह की जगहों को देखना बहुत ज़रूरी है। हम मिलते हैं, किसी से मिलना जुलना होता है, गीत संगीत होता है, तो ज़िंदगी का आनंद ही कुछ और होता है, या यूं कहिए कि भरपूर होता है। अपनी कार में बैठकर लंबी सड़क पर सफ़र करते हुए, पेड़ों, खेतों, खलिहानों, हाईवे पर गुजरती गाड़ियों को देखते हुए गाने सुनना, या आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में घूम रहे हों, चारों ओर खूबसूरत वादियां हों, हरे हरे पेड़, खूबसूरत वादियों में क्या नहीं समाया होता है। आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए, बर्फीली पहाड़ियों को देखते हुए जब गुजरते हैं तो ज़िंदगी शायद हम यूँ कह लीजिए कि भरपूर जीते हैं। और ऐसे में जब हम बेहतरीन गानों को सुनते हैं तो हमारी जो भी ट्रिप हम जा रहे हों, गुजर रहे हों, वो और भी ख़ास हो जाती है। और अच्छे गानों की एक प्यारी सी लिस्ट भी ज़रूरी है ताकि सफ़र यादगार बन सके। और ये भी बहुत ख़ास बात है, अच्छी बात है कि बॉलीवुड में रोड ट्रिप के लिए बढ़िया से बढ़िया हिंदी गानों की भी कोई कमी नहीं। तो आप चाहे यात्रा कार से कर रहे हों, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हों, किसी सुनसान राजमार्ग पर पैदल चलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हों, आप दुपहिया वाहन से जा रहे हों या फिर साइकिल से। और आज तो श्रोताओं विश्व साइकिल दिवस है और हर साल 3 जून को ये ख़ास दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से फिट टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए और खुद भी फिट रहने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। और बात साइकिल की चली है, साइकिल दिवस की चली है, तो सभी श्रोताओं को पहले तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस दिन की। और साइकिल का प्रयोग भरपूर करें, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है, और इसके अलावा आजकल देखिए डीजल पेट्रोल की भी क्राइसिस है, तो ऐसे में दोपहिया हमारा साइकिल हमारे सबसे काम का है और खूबसूरत भी है। और इसको चलाते हुए अगर आप कुछ यूँ गुनगुनाएं डबल सीट होकर तो मज़ा कुछ और भी आए।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी करके तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो।
2: तो श्रोताओं, भाभी फिल्म में नितिन मुकेश अनुराधा पोडवाल को आपने सुना। साल 1991 की ये फिल्म थी। और जब खुशनुमा माहौल हो, सैर पर निकले हो, कहीं ट्रिप पर निकले हो, तो एक गाना और हमें बखूबी याद आता है और वो है जब वी मेट फिल्म से, आओ मीलों चलें। ये एक बेहद लोकप्रिय गाना है। आप अकेले जाएं या किसी खास साथी के साथ आप सफ़र पर निकले हों, तो माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट गाना है। और इस खूबसूरत गाने का आनंद चलिए हम भी लेते हैं। जिस तरह जब वी मेट फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर खान की तरह भटिंडा से मनाली तक की दूरी को सामंजस्य के साथ उन्होंने तय किया, वैसे ही कुछ हम भी इस गाने को सुनते हैं और अपने अपने हिसाब से इस गाने का आनंद लेते हैं और यात्रा का भी मज़ा ले लेते हैं। आकाशवाणी अल्मोड़ा से ये गाना सुनते हुए, जब वी मेट फिल्म है, आवाज़ें हैं शान और उस्ताद सुल्तान खां की, इरशाद कामिल के बोल हैं, प्रीतम का मधुर संगीत है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, सफर के खूबसूरत तराने इस समय हम लेकर आए हैं मेरी पसंद के बहाने। श्रोताओं, एक फिल्म और याद कीजिए, पीकू, जो कि बहुत ही प्यारी सी फिल्म है और इस फिल्म की कहानी भी दिल को छू लेने वाली है ना। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो ये फिल्म को आप खुद महसूस कर सकते हैं। और इसमें एक जर्नी सॉन्ग है और जो बहुत ही सुरीला है, मधुर इसकी धुन है, बोल इसके बहुत ही ख़ास हैं और हिंदी और बांग्ला का ये मिश्रण है जो एक अलग ही फील देता है। आइए सुनते हैं। और हाँ, इस फिल्म में दिग्गज कलाकार शामिल थे जैसे अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पादुकोण।

सफर का आनंद लेते हुए अगर हमें रॉक स्टार फिल्म का गाना सुनने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या हो। इस फिल्म का ये गाने, यूं तो इस फिल्म के सभी गाने बेमिसाल हैं, लेकिन एक गाना जो हम आपको इस समय सुनवाने जा रहे हैं, और ये गाने की अगर हम बात करें, आप लंबे समय बाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो ये गाना आपके रोड ट्रिप की शुरुआत के लिए एकदम सही रहेगा। और इस गाने को जब आप गुनगुनाएंगे इस कलाकार के साथ तो आपको और भी सुकून देगा और आपके दिल को असीम आनंद से भर देगा। तो श्रोताओं, ये गाना है मोहित चौहान की सुरीली आवाज़ में, रॉकस्टार फिल्म का नाम है, इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान का संगीत।

सुशोधन, आपके रोड ट्रिप प्लेलिस्ट में सज सकते हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत तराने, और वही गाने इस समय मेरी पसंद में हम आपको सुनवा रहे हैं। और अब जो गाना हमने लिया है वो भी बहुत सुरीला है, जिस तरह ये फिल्म बेहद प्यारी फिल्म रही और दिल को छू लेने वाली ये फिल्म थी बर्फी, तो इस फिल्म का गाना भी ये वाला। यूँ तो इस फिल्म के सभी गाने अपने आप में बेहद खूबसूरत थे। सुनिधि चौहान और पपोन की आवाज़ों में ये गाना है बर्फी फिल्म से। और जैसा कि मैंने कहा, आपकी रोड ट्रिप प्लेलिस्ट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत, जीवंत और एक खुशनुमा माहौल के लिए बेहद सुरीला तराना। आइए सुनते हैं ये गाना बर्फी फिल्म से।

और अब चलते चलते अगर आपको ये गाना नहीं सुना है तो फिर क्या सुना है, स्वदेश फिल्म से है। और स्वदेश फिल्म में ये गाने के जो बोल हैं वो बहुत ही दिल को छू जाने वाले हैं। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल, कितनी हसीन है ये दुनिया। सच में सफ़र के लिए बहुत खूबसूरत गाना है और एकदम फिट भी बैठता है। इस गाने में एक यात्री अलग अलग लोगों के साथ यात्रा कर रहा है, सादगी भरा जीवन, भारत का एक खूबसूरत नज़ारा जो दिल को छू लेने वाला है। और ये गाना रोड ट्रिप के लिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि इसके शब्द जो हैं आपको हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और विरासत से ही जोड़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, सफ़र का मज़ा लीजिए, ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लीजिए, घूमिए फिरिए, सैर पर निकलिए और यूं ही गुनगुनाते रहिए। बहरहाल इस समय अंजू पंक्ति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर। दिन के 12:30 हुए हैं। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संस।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी को आपकी बहन गीता कनवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों आज के आधे घंटे के इस खूबसूरत सफर में हम करेंगे आपसे कुछ और नए रोचक विषयों पर चर्चा और साथ ही करेंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों हम सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें इसके लिए हम कई उपाय करते हैं, कई प्रकार के योगासन मेडिटेशन और व्यायाम भी करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसी प्रकार बहनों साइकिलिंग भी स्वास्थ्य के लिए उत्तम व्यायाम है और पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन भी है। यह शारीरिक फिटनेस सुधारने और बिना किसी प्रदूषण के आवागमन में मदद करती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों और स्वच्छ हवा का संरक्षण होता है। और बहनों पर्यावरण संरक्षण और सेहतमंद स्वास्थ्य बना रहे इसी को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 3 जून यानी आज के दिन को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस के रूप में। बहनों विश्व साइकिल दिवस को मनाने का उद्देश्य यातायात के लिए एक आसान सस्ती भरोसेमंद उत्तम स्वास्थ्य को संजोने और लंबे समय तक पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करने वाले साधन के तौर पर साइकिलिंग को बढ़ावा देना है। बहनों दुनिया भर के पर्यावरण और स्वास्थ्य विशेषज्ञ साइकिलिंग को पर्यावरण संरक्षण व उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सशक्त साधन और दीर्घकालीन उपाय के रूप में देखते हैं। बहनों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2018 को एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की थी और तभी से यह दिवस विश्व भर में साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बहनों इस दिवस को मनाने की महत्ता लोगों में साइकिल के फायदों के प्रति जागरूक करना और इसे परिवहन के एक सस्ते टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है ताकि पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जा सके। और बहनों 2026 में विश्व साइकिलिंग दिवस की थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। तो बहनों ये तो थी कुछ बातें विश्व साइकिल दिवस के बारे में और अब आइए इसी क्रम में आगे आपको सुनवाते हैं साइकिलिंग सेहत भी पर्यावरण संरक्षण भी विषय पर भरत शाह उत्तराखंड साइकिलिस्ट अल्मोड़ा से की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत।
1: स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर। आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
2: ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
1: इसके अलावा सर साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
2: अनुभव तो साइकिल में जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है।

0: जी
1: तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है, उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती हैं, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे।
0: जी
1: और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले। और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के लिए।
0: जी बहुत अच्छा सर। सर जैसा कि आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
1: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं। और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं।
0: जी
1: लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस किया है।
0: जी जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि आजकल पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही पेट्रोल आदि के धुएं से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो आपके अनुसार साइकिलिंग पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत में कैसे योगदान दे सकती है?
1: ये तो बहुत जरूरी है। दरअसल लोग, मैंने देखा है कि अधिकतर कई वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या गाड़ियां चलाते हैं, जबकि उनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। और अधिकतर लोग खाली घूमने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं और पेट्रोल की आजकल वैसी परेशानी है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी साइकिलिंग अच्छी है और आपके जो फालतू खर्चे होते हैं उसके लिए भी साइकिलिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, और साइकिलिंग एक ऐसी चीज है जो साउंडलेस है। अगर कहते हैं ना कहीं आपको किसी नेचर के अंदर जाना है तो अगर आप गाड़ी से किसी जगह को जाते हैं तो वहां की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है।
0: जी
1: किसी भी सेंचुरी के अंदर जाते हैं, मैं भरतपुर गया था तो भरतपुर में वहां पे उन्होंने साइकिलें रखी थी ताकि आप वहाँ साइकिल से जाइए और घूमिए, काफी डिस्टेंस कवर कीजिए और उसके साथ बर्ड वॉचिंग कीजिए। इसी तरह से हमारे उत्तराखंड में अब तो माउंटेन बाइकिंग का बड़ा अच्छा स्कोप है। एक बार हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ बिनसर सेंचुरी में साइकिलिंग करी थी और शायद उस वक्त उनका भी यही उद्देश्य था कि पहाड़ में किस तरीके से साउंडलेस वाहन को बढ़ावा दिया जाए, मतलब ऐसी साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। और जो यहाँ पे लोग जाते हैं गाड़ियों से या बाइक से अननेसेसरी जो प्रयोग करते हैं उस पर भी रोक लग सकती है। मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि नेपाल जैसे छोटे से देश में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक बच्चे को बाइक चलाने को नहीं दी जाती। वहां पे मैं गया था तो वहां पे अधिकतर लोग मैंने साइकिल चलाते हुए देखे। तो वो चीज को हमारे यहाँ भी अगर प्रभाव में डालेंगे तो उससे काफी कुछ एनवायरमेंट पे भी फर्क आएगा और बच्चों को भी काफी ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए साइकिल जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और जब से गियर साइकिलें बनी है तब से तो चलाने में कोई परेशानी नहीं है, बस एक बार आपको इसका अभ्यास होना चाहिए, फिर उसके बाद पहाड़ों में आप अच्छी तरह से साइकिलिंग कर सकते हैं।
0: सर जैसा कि आप इतने समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और अलग-अलग स्थानों पर भी आप जाते हैं, तो साइकिलिंग के प्रति युवा वर्ग में किस तरह का रुझान आपको देखने को मिलता है?
1: इसके साथ आपको मैं कहना चाहूंगा कि एक टाइम ये था कि 2019 या 2020 कहना चाहिए, उस टाइम में कोरोना की एक लहर यहाँ पे आई थी और उस दौर में लोगों ने साइकिलिंग बहुत शुरू की थी। इवन मैंने अल्मोड़ा में भी देखा था कि काफी लोग साइकिलिंग करने लगे थे। हमारा भी एक उत्तराखंड साइकिलिस्ट के नाम से हमने भी क्लब बनाया था, काफी लोगों ने ज्वाइन किया था। इवन मुझे याद है कि हमने 40-50 साइकिलें तो लोगों के ऑर्डर पे मंगवाई थी और काफी लोगों ने पसंद किया था साइकिलिंग, लेकिन धीरे धीरे ये क्रेज

0: थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि लोग व्यस्त हो गए कहना चाहिए, या यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पाया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जब तक किसी भी चीज के लिए एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा तब तक लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीजें प्रमोट होनी चाहिए, सरकारी रूप से भी प्रमोट होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी प्रमोट होनी चाहिए, और गार्जियंस को भी बच्चों को प्रमोट करना चाहिए इस तरीके के लिए। जैसे मैंने हिमाचल में देखा कि 10th में पढ़ने वाले या 9th में पढ़ने वाले बच्चे को जो इवेंट होते हैं उसमें वहाँ के गार्जियन अपने साथ लेकर के जाते हैं कि लीजिए ये साइकिल है और आप जो है साइकिल चलाइए। जबकि मैंने देखा कई जगह हमारे यहाँ पहाड़ों में लोग कहते हैं नहीं आप बच्चे से गिर जाएगा, इसे अभी साइकिल नहीं चलानी है। तो कॉन्फिडेंस क्रिएट जब होगा, जब वो एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा, तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ अगर हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि गार्जियन लोग इसे प्रमोट करेंगे, बच्चों को मोटरसाइकिल के अलावा उसको छोड़ करके साइकिल को प्रमोट करेंगे, तो ये काफी मुझे लगता है अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके अलावा सर, आज के समय में स्वस्थ रहना और साइकिल चलाना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, तो क्या महिलाओं की भी भागीदारी साइकिल में हो सकती है?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरा काफी इस विषय में इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैंने जब से साइकिलिंग में देखा, जब मैं बाहर जाता था तो वहाँ काफी महिलाएं साइकिलिंग करती थी, लेकिन हमारे अपने पहाड़ में उत्तराखंड में महिलाओं का ध्यान इस ओर नहीं है, या यहाँ पे ये लोग कम करते हैं। हो सकता है देहरादून में करते हों, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में इधर की साइड में अभी इतना इसका प्रभाव नहीं पहुंचा है। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि महिलाओं को भी साइकिलिंग को अपनाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और छोटी छोटी डिस्टेंस तय करनी चाहिए, जिससे एक तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, दूसरा एक अच्छा इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा और वो लोग भी काफी सीख सकेंगे कि साइकिलिंग कितनी फायदेमंद है, इसके बारे में जान सकेंगे, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का पर्यटन है, यहाँ के लोगों का जो देखने का समझने का नजरिया है, वो भी कुछ चेंज होगा।
1: जी, साइकिल चलाएं, सेहत को संजोए और पर्यावरण बचाएं, इस पर सर आपके क्या विचार हैं?
0: ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है पर्यावरण का। जब मैं पहाड़ों में साइकिलिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कचरे के काफी ढेर जो है सड़क के किनारे फैले हुए रहते हैं, जिस गांव के पास से गुजरते हैं इतने खूबसूरत गांव के पास में कचरे के ढेर होते हैं, और काफी सुंदर सुंदर जगह हैं जो हमारे पहाड़ों में हैं, लेकिन जब से ये प्लास्टिक का कचरा आया है, बोतल्स हैं, प्लास्टिक की थैली है, ये चीजें काफी इन सुंदर जगहों की शोभा को बिगाड़ती हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग के द्वारा हम एक संदेश भी दे सकते हैं कि आप जो है कचरा न फैलाएं, या कचरे को एक जगह इकट्ठा करें, जहाँ पर डंप जोन है वहां तक पहुंचाएं, या जहाँ पर रिसाइकलिंग का जोन है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा पहाड़ है वो सुंदर दिखे जैसा कि बहुत पहले दिखता आया था। और यही मेरी इच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए। शायद सभी लोग पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो यह माहौल बनेगा और सभी को अच्छा लगेगा।
1: जी सर, जैसा कि आपने बताया कि साइकिलिंग हमारे स्वास्थ्य, हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, तो आज विश्व साइकिलिंग दिवस के दिन आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके, और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। और विश्व साइकिलिंग दिवस पर मैं यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
1: जी सर, सर आप हमारे कार्यक्रम घर संसार से जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की और अपना कीमती समय आपने हमें दिया। आपकी साइकिलिंग यात्राएं सुखद और मंगलमय रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी, थैंक यू।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी साइकिलिंग सेहत भी पर्यावरण संरक्षण भी विषय पर भरत शाह उत्तराखंड साइकिलिस्ट अल्मोड़ा से की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत। और अब आइए कार्यक्रम में करते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ, क्योंकि बहनों अपनों का साथ हो और चारों ओर हरियाली हो तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है, बिल्कुल इस गीत की तरह।
3: अरे अरे, ए

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: स्वागत है बहनों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में। बहनों आज है बुधवार और आज का हमारा खास सेगमेंट होता है रसोई।

तो आइए आज इसी क्रम में बात करते हैं पोषण से भरपूर सेहत के लिए फायदेमंद अंकुरित अनाज के बारे में। बहनों, अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स भोजन का खजाना माना जाता है। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज, आयरन, कैल्शियम भरपूर होते हैं। साथ ही ये अंकुरित अनाज कैलोरी में कम होते हैं और वजन घटाने, पाचन सुधारने, ब्लड शुगर नियंत्रित रखने, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी अत्यधिक फायदेमंद होते हैं। बहनों, अंकुरित अनाज में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही ये शरीर में विटामिन ए, विटामिन के निर्माण में सहायक कैरोटीन की मात्रा में भी वृद्धि करता है। देखिए तो बहनों, स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज सबसे सस्ता और अच्छा आहार होता है। इसके लिए आपको हर दिन ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। घर में रखी दाल, अनाज या फिर नट्स को पानी में भिगोकर आप स्प्राउट बना सकती हैं और घर पर ही आसान तरीके से इसे तैयार कर इसका सेवन नाश्ते के रूप में कर सकती हैं। बहनों, ये तो थी बातें अंकुरित अनाज के बारे में, और अब आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। अंकुरित अनाज के सेवन से शरीर में पाचन शक्ति में सुधार होता है, क्योंकि अंकुरण की प्रक्रिया बीजों के एंटी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को रोकने वाले तत्व को तोड़ देती है, जिससे शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण आसान हो जाता है और इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या दूर करते हैं। साथ ही बहनों, अंकुरित अनाज शरीर के वजन को भी नियंत्रित करते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी कम होती है, लेकिन ये पेट को देर तक भरा रखते हैं, जिससे कि बार बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल रहता है। इसके अलावा बहनों, अंकुरित अनाज के नियमित सेवन से हाई ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल में भी राहत मिलती है। साथ ही मधुमेह रोगियों में ब्लड शुगर का स्तर भी नियंत्रित रहता है। बहनों, अंकुरित अनाज के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। साथ ही बहनों, अंकुरित अनाज प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। बहनों, अब बात करते हैं अंकुरित अनाज को किस तरह खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। बहनों, अंकुरित अनाज को खाने का सही समय है नाश्ते में खाना। ये दिन भर के लिए हमें ऊर्जा देते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप स्प्राउट्स को सुबह के नाश्ते में ही इनका सेवन करें। इसके अलावा इन्हें चबा चबा कर खाएं, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत होता है, इसलिए पाचन को आसान बनाने के लिए इन्हें अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रही हैं तो केवल एक कटोरी से ही करें, फिर आप इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर खा सकती हैं। साथ ही बहनों, अगर आपका पाचन थोड़ा कमजोर है तो कच्चे स्प्राउट्स ना खाएं। मूंग या चने को अंकुरित करने के बाद घी या तेल में हल्का छौंक लगाकर खाएं, और चिकित्सक की परामर्श अनुसार भी आप इन्हें खा सकती हैं। और बहनों, सबसे अहम बात, अगर आप घर पर स्प्राउट्स बना रही हैं तो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। साफ पानी में धोकर इन्हें भिगोएं और साफ बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। तो बहनों, अगर आप भी घर पर अंकुरित अनाजों को भिगोकर इनका सेवन करती हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को सेहतमंद बनाए रखते हैं और हमें देर तक ऊर्जा देते हैं। तो आप भी घर पर स्प्राउट्स बनाइए, खुद खाइए और औरों को भी खिलाइए। स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम घर संसार। तो बहनों, ये तो था आज का हमारा खास सेगमेंट रसोई से। और बहनों, अब आइए करते हैं आपके साथ दो बातें। बहनों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इस विषय पर आप हमें अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेज सकती हैं। कार्यक्रम घर संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड संख्या है 263601। आप हमें अपने ईमेल पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है gharsansar@gmail.com। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी मैसेज भेज सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411001122। बहनों, आपके द्वारा भेजे गए पत्रों, मैसेजेस को हम घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों की चिट्ठी अंक में प्रत्येक माह के घर संसार कार्यक्रम के अंतिम अंक में शामिल करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक

संख्या में आप हमें पत्र, ईमेल व व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। और अब आइए कार्यक्रम में करते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

बहनों इसी गीत के साथ अपनी बहन गीता कनवाल को दीजिए आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। अगले अंक में होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: Okay, hindi tama dyan.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
2: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
1: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की बारीकियां सीखेंगे। इसके लिए

0: प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चमोली जिले में क्षय रोग उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जन जागरूकता रैली निकाली गई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आदर्श और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने पहल शुरू कर दी है। पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल, सड़क, विद्युत, दूरसंचार और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाई जाए, जिसे जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। श्री कौशिक ने ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की बेहतर निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यों की समीक्षा करेगी ताकि एक ही कार्य पर दोबारा सरकारी धन खर्च न हो और सभी पंचायतों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को अब पाठ्यक्रम के साथ कृत्रिम बुद्धिमता, एआई और कोडिंग की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। इसके लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने कोड योगी और कंप्यूटर एंड लर्न फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक रिपोर्ट।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में हुए इस समझौते के तहत विद्यार्थियों को एआई के मूलभूत सिद्धांतों, कोडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इसके व्यावहारिक उपयोगों का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को आधुनिक, रोजगारपरक और समय की मांग के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को नई तकनीकों में दक्ष बनाने के साथ ही उनकी समस्या समाधान क्षमता और नवाचार की सोच को भी विकसित करेगी। उन्होंने बताया कि छात्र अपने स्मार्टफोन से अपनी भाषा में बिना किसी शुल्क के यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर लैब, आधारभूत ढांचे या विशेष शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। कोडयोगी फाउंडेशन इस कार्यक्रम का वित्त पोषण और संचालन करेगा, जबकि प्राविधिक शिक्षा विभाग राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: उधम सिंह नगर जिले के ग्राम बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 156 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 1872 आवास का कार्य अंतिम चरण में है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि शीघ्र ही इन आवासों को आर्थिक रूप से कमजोर पात्र लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 185 लाभार्थियों ने धनराशि जमा कर दी है, जबकि 222 लाभार्थियों को पत्र और दूरभाष के माध्यम से धनराशि जमा कराने को कहा गया है।
2: ग्राम बागवाला में ईडब्ल्यूएस के 1872 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये हमारे फ्लैट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। जितने हमारे लाभार्थी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द वो अपना इंस्टॉलमेंट जो भी निर्धारित है, जैसे 3 लाख रुपए प्रति लाभार्थी निर्धारित है, वो अपना इंस्टॉलमेंट दे दें ताकि हम उनकी रजिस्ट्री और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं इसके अलावा उनको फिजिकल पोजेशन फ्लैट का दे सके। इसके क्रम में हम लोग लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं दूरभाष के माध्यम से एवं पत्र के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द जो लाभार्थी अंश है वो हमें प्राप्त हो और हम आगे की कार्रवाई कर सकें।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री जोशी ने मसूरी में पेयजल की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 24 घंटे के भीतर पेयजल आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को पानी की लाइनों में होने वाले लीकेज को तत्काल चिन्हित कर उनकी मरम्मत सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि जल की बर्बादी रोकी जा सके और आम जनता को निर्बाध पेयजल उपलब्ध हो सके।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चमोली जिले में क्षय रोग उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों के

0: एक्सरे, रक्त जांच, मधुमेह और अन्य जांच कर रही हैं। जिले के सभी विकास खंडों में यह युद्ध अभियान युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है ताकि वर्ष 2030 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सके। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित ने बताया कि जिले के 102 उच्च जोखिम वाले गांव में जांच अभियान पूरा किया जा चुका है। वहीं कर्णप्रयाग विकास खंड में 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत करीब 50% कार्य पूरा हो चुका है।
1: टीबी मुक्त भारत अभियान जो है चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हम जो है टीबी को हमें उन्मूलन करना है, टीबी बीमारी को 2030 तक, तो इसके लिए प्रोग्राम चल रहा है और फील्ड स्तर पर एक्टिव रूप से हो रहा है। इसमें हम जो है आरोग्य शिविर के नाम पे हर गाँव में जो है, जो हमारे गाँव है, इसमें रोटेशन वाइज कैंप लगा रहे हैं जिसमें एक्सरे, शुगर, हीमोग्लोबिन, बीएमआई की जाँच हो रही है, टीम के द्वारा जा रही है, और गाँव में हैंड हेल्ड एक्सरे जो होते हैं वो जा रहे हैं।
0: वरिष्ठ टीबी लैब सुपरवाइजर राजदर्शन ने बताया कि आरोग्य शिविरों के माध्यम से 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों की जांच, दवा और पोषण सहायता सहित सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
2: अभी तो हम लोग जो है हाई रिस्क प्लेस जो हमको दिए गए हैं, जो कर्णप्रयाग ब्लॉक में है, वो 69 प्लेस हैं, उनको अभी हम कवर कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि हम कैंप लगा रहे हैं। कैंप में जो है बीपी, शुगर और एक्सरे, स्पूटम, सब चीजों की जांच हम लोग वहां पर कर रहे हैं हाई रिस्क प्लेस में। और हाई रिस्क प्लेस में जो हम लोगों ने टारगेट जो है वो 14 साल से ऊपर के सारे लोगों का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे होता है, पोर्टेबल मशीन वहां पर जाती है। ग्रामीणों का बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
0: ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जन जागरूकता रैली निकाली गई। डाटपुल से जिला न्यायालय परिसर तक आयोजित रैली में 200 से अधिक प्राविधिक स्वयं सेवकों ने भाग लिया और लोगों को ईंधन बचत के प्रति जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को ईंधन संरक्षण के प्रति महत्व से जोड़ना है।
3: जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी जनमानस से कि आप ईंधन बचाएंगे तो आप राष्ट्रहित में अपना योगदान दे पाएंगे, इसी उद्देश्य से कि राष्ट्रहित में जन जन अपना अपनी भागीदारी दे सके, उनको जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया।
0: अभियान के तहत प्राविधिक स्वयंसेवक गांव और शहरों में लोगों को कम ईंधन उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं।
4: वैश्विक स्तर पर ईंधन का बड़ा संकट है और कम ईंधन इस्तेमाल करने से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। कि आज जंगलों में जो वनाग्नि है उसके ऊपर भी मैं कहना चाहूंगा, उससे भी पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है और हमें बिल्कुल एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून जिला प्रशासन सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम में विकासनगर तहसील के शीशमबाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही की गई। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मजार और अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन के अनुसार जांच में यह भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज पाई गई थी और नियमानुसार नोटिस व कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये कार्यवाही की गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की बारीकियां सीखेंगे। इसके लिए प्रावधिक शिक्षा विभाग ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चमोली जिले में क्षय रोग उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ऊर्जा संरक्षण पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लो 8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। पहले सुनिए मुन्नी बेगम को।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: और लीजिए अब सुनिए मुजफ्फर अली का कलाम छाया गांगुली की आवाज में।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज सुनिए कड़ी संख्या 1298।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, अरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
3: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
3: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
3: जी हाँ जरूर।
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
3: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी,
3: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
3: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
2: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
3: जी।
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
3: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
2: जी।
3: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
2: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
3: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
2: ये

0: दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
8: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
9: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे? देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
9: ओ, ये तो रीछ की आवाज है।
10: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है।
9: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
9: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
9: ओ, अब मैं क्या करूं?
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
9: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
9: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
9: बच गए। लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
9: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़े।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
1: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार

रेहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम अरवानिया, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको। मैं।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हाँ?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद,

0: सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
1: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
0: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
2: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
0: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
4: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
5: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
4: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
5: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हम।
7: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
8: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
8: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
4: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
5: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
4: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
5: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
4: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे।

0: गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा।
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हाँ, हाँ,
5: सब तैयार है।
4: हम
5: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
1: नहीं कटने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थी। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान।
6: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
1: अरे कहां से
7: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। हो जाओ शुरू, काटा पे
1: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
1: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
6: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
6: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई।

0: पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बावला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

हम आकाशवाणी कैलमोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत से, कलाकार हैं सतेश्वर प्रसाद।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया।

0: शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने

0: अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए और समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं खेती की बातें। आज जानकारी का विषय है गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रिपुसूदन कुमार।
4: किसान भाइयों, पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुपालन के अंतर्गत हम पशुओं को चारा एवं दाना खिलाकर दुग्ध एवं अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। हमारा देश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है, परंतु अभी भी हमारे देश का प्रति पशु दुग्ध उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। हमारे देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 45% गायों से तथा 50% से अधिक भैंसों से प्राप्त होता है। पशुओं में भैंसवंशीय

पशु गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका रंग काला, शरीर पर चर्बी की मोटी परत एवं पसीने की ग्रंथियों का कम विकसित होना है। उच्च विदेशी एवं संकर नस्ल के गौ पशुओं में भी गर्मी का प्रभाव ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी नस्लें ठंडे देशों की हैं। पशुओं के दुग्ध उत्पादन पर जलवायु एवं वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में प्रायः यह देखा गया है कि पशुओं में दुग्ध उत्पादन अन्य दिनों की तुलना में बहुत ही कम होने लगता है। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए ग्रीष्म ऋतु में उनका उचित एवं कुशल प्रबंधन अति आवश्यक है। गर्मी के मौसम में तो दूध उत्पादन में गिरावट 15-50% तक देखी गई है तथा इसके साथ साथ पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान से गर्भधारण से भी 10-20% तक की गिरावट पाई जाती है। किसान भाइयों, यदि हम गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल ठीक ढंग से कर लेते हैं तो उत्पादन में होने वाली गिरावट को रोका जा सकता है। जो पशु गर्मी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनमें अन्य पशुओं की तुलना में अलग तरीके के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि पशु सुस्त दिखाई देता है, उसकी सांस लेने की गति धीमी होती है तथा पशुओं को पसीना बहुत ज़्यादा आता है तथा पशु अत्यधिक गर्मी होने पर हाँपने या मुँह से सांस लेने लगता है और जीभ को भी बाहर निकाल देता है। इसके साथ साथ पशु की आहार ग्रहण क्षमता कम हो जाती है और पशु सही ढंग से जुगाली नहीं करता, जिससे कि उसके खाना पचाने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण पशु का दूध उत्पादन एवं स्वास्थ्य प्रभावित होता है। किसान भाइयों, गर्मी के समय में पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने हेतु हमें पशु आवास वातावरण खान पान एवं उसकी उचित देखभाल का उचित प्रबंधन करना चाहिए। दुधारू पशुओं का चयन करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो पशु दूध उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हों वह हमारे यहाँ के वातावरण में आसानी से अनुकूलित होने वाले हों। उच्च देसी नस्ल के संकर पशु गर्मी के प्रति सहनशील रहते हैं। नस्ल के सही चुनाव से भी हम पशुओं पर वातावरण के अनुसार पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। आवास प्रबंधन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पशु के रहने के स्थान का तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, क्योंकि इस तापमान पर पशु सुविधाजनक रूप से रह सकता है। पशुओं के आवास में यदि कच्चे फर्श का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर चूने का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पक्के फर्श वाले आवास में सफाई एवं फर्श की धुलाई के साथ साथ यदि फिनाइल के घोल का प्रयोग करते हैं तो गर्मी के मौसम में होने वाली मक्खी, मच्छर एवं कीट इत्यादि से भी बचाव हो सकता है। पशुओं के स्थान उपलब्धता को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रति पशु लगभग 50 वर्ग फीट जगह उपलब्ध होनी चाहिए तथा छत की ऊंचाई बीच में 16 फीट एवं किनारों की तरफ 12 फीट होनी चाहिए तथा बीच में ऊपर की तरफ रोशनदान या एग्जॉस्ट फैन लगा हो तो गर्मी का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। पशुशाला की छत एबेस्टस की बनी हो तो उस पर भी गर्मी का कम प्रभाव पड़ता है। यदि छत नालीदार टीन की हो तो उसके ऊपर गर्मी के मौसम में घास या पुआल को बिछाकर भी गर्मी का प्रभाव कम किया जा सकता है। यदि हम संकर एवं उच्च नस्ल के पशु दूध उत्पादन के लिए पाल रहे हैं तो गर्मी के मौसम में पंखों एवं कूलर की व्यवस्था करना लाभकारी रहता है। इससे पशु के शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। आवास खास तौर पर ऐसा रहना चाहिए कि उसमें उचित हवा का आवागमन हो सके और खिड़कियों को बंद करने एवं खोलने की व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए, जिससे कि गर्मियों में पशुओं को लू से बचाने हेतु इसे बंद किया जा सके तथा पशुशाला में पानी की व्यवस्था उचित रहनी चाहिए, जिससे कि पशु को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध एवं स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। गर्मी के मौसम में पशुओं के पानी पीने की क्षमता में 50% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। पानी को पशु के बांधने के स्थान पर या ठंडी जगह पर जैसे कि पेड़ की छाया या शेड में रखना चाहिए। पशुओं को पानी दिन में कम से कम

से 5 बार तक पिलाने से दुग्ध उत्पादन में गिरावट कम होती है तथा पशु गर्मी को भी कम महसूस करता है। गर्मी के दिनों में वयस्क पशु को प्रतिदिन 100 लीटर पानी पिलाने से गर्मी एवं लू का प्रभाव कम हो जाता है। पशुओं का वातावरण का प्रबंधन इस तरीके का होना चाहिए कि तापमान सामान्य रह सके एवं सुबह शाम खुला वातावरण मिल सके तथा सूर्य की किरणें एवं लू से बचाव भी आसानी से हो सके। पशुओं को गर्मी की लू से बचाने हेतु पशुशाला में खिड़कियों के दरवाजे पर मोटा पर्दा या जूट की चादर लगाकर उस पर पानी का छिड़काव करके भी पशुशाला को ठंडा बनाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम होने लगती है तथा जो सूखा चारा उन्हें खाने को दिया जाता है उसको पचाने वाले जीवाणु जो कि पशु के पेट में रहते हैं कम सक्रिय रहते हैं। हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हमें गर्मी के मौसम में मक्का, ज्वार, हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास एवं लोबिया इत्यादि को उगाकर हरे चारे की कमी को पूरा कर सकते हैं। यदि सर्दी के मौसम में हम हरे चारे की साइलेज को जो कि मक्का, ज्वार एवं बरसीम इत्यादि से बनाया जा सकता है, इसको यदि हम सुरक्षित करके रख लेते हैं तो गर्मी के मौसम में इस हरे चारे के विकल्प के रूप में इसे उपयोग में लाया जा सकता है। गर्मी के दिनों में पशुओं में रेशा पाचन की क्षमता बहुत कम हो जाती है, अतः यदि हम अधिक वसा एवं प्रोटीन का दाना पशुओं को खिलाते हैं जैसे कि सोयाबीन एवं कपास के बीज इत्यादि को भिगाकर, फुलाकर या पकाकर देते हैं तो पशुओं में प्रोटीन की कमी को कम कर सकते हैं तथा इसे पशु के द्वारा आसानी से पचाया भी जा सकता है। किसान भाइयों, पशुओं को यदि हम चरने के लिए छायादार वृक्षों के नीचे तथा सुबह शाम ठंडे वातावरण में छोड़ते हैं तो पशुओं के दुग्ध उत्पादन में लाभ होता है तथा पशुओं में गर्मी का प्रभाव भी कम होता है। पशुओं के ऊपर पानी के फव्वारे में दिन में 3-4 बार छिड़काव करने से पशु आरामदेह महसूस करता है तथा उस पर गर्मी का प्रभाव भी कम पड़ता है। पशुओं को उसके शरीर के ऊपर खुरेरा एवं मालिश करने से भी शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से बना रहता है और पशु का उत्पादन एवं स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। गर्मी के मौसम में पसीना आने के कारण पशुओं के शरीर से नमक एवं खनिज मिश्रण का भी हास्य होता है, अतः इसकी कमी को पूरा करने के लिए तथा पशुओं से अधिक दूध उत्पादन लेने के लिए पशुओं को पशु चॉकलेट अर्थात यूरिया सीरा खनिज मिश्रण पिंड का प्रयोग लाभदायक होता है। इस पिंड को जानवर को चाटने के लिए दिया जाता है जिससे कि पशुओं के रूमन अर्थात पेट में जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे जीवाणुओं को उचित मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति होने लगती है, अतः पशु को यदि 200 से 220 ग्राम तक प्रतिदिन चाटने के लिए दिया जाए तो पशुओं में दुग्ध उत्पादन 10 से लेकर 25% तक बढ़ाया जा सकता है। यदि हम अपना घरेलू दाना एवं राशन पशुओं को दे रहे हों तो उसमें 2% के हिसाब से खनिज मिश्रण एवं 1% के हिसाब से नमक मिलाकर भिगाकर एवं फुलाकर खिलाने से पशुओं में होने वाली नमक एवं खनिज मिश्रण की कमी को पूरा किया जा सकता है। पशु से अच्छा दूध उत्पादन लेने हेतु गाय को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम संतुलित आहार तथा भैंस को 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम पशु आहार देना चाहिए। पशुओं को गर्मी के मौसम में सूखे भूसे की पाचकता बढ़ाने हेतु भूसे को भिगाकर या 3% यूरिया से उपचारित करके पशुओं को खिलाया जाए तो पशुओं में रेशा पचाने की तथा आहार ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है तथा दुग्ध उत्पादन के साथ साथ वसा में भी बढ़ोतरी होती है। गर्मी के मौसम में यदि ज्वार को हरे चारे के रूप में लिया जा रहा हो तो इसको 1 बरसात होने के बाद या 2 सिंचाई के बाद ही खिलाना चाहिए क्योंकि इसमें हाइड्रोसाइनाइड एसिड होता है जो कि पशुओं के लिए हानिकारक है। यदि पशुओं को चरने के लिए जंगल भेजा जाता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ वृक्ष जैसे बांज, अयार, खरसू इत्यादि के पेड़ों में जब गर्मी के मौसम में कोमल कोमल छोटी पत्तियां आती हैं तब पशु इसके को खाने के लिए लालायित होता है।

0: तथा पशु के द्वारा इसे ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो पशु की मृत्यु होने का भी खतरा बना रहता है। इसका कारण इसमें विषाक्तता युक्त पदार्थ पाया जाना है। अतः इन पेड़ों की पत्तियों को एक या दो बारिश के उपरांत या पत्तियों के परिपक्व होने पर ही खिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है। अतः पशु को गर्मी के मौसम में एवं बरसात के आने से पहले टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, जैसे खुरपका, मुंहपका, गला घोंटू एवं लंगड़ी इत्यादि, जिससे कि संक्रामक बीमारियों से होने वाले दुष्प्रभाव से पशुओं को बचाया जा सके तथा दूध का उत्पादन में होने वाली गिरावट को रोका जा सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण भी पशुओं में वाह परजीवियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जैसे किलनी, जू एवं पिस्सू इत्यादि। इससे बचाव हेतु पशुओं को परजीवी नाशी दवाइयों से समय समय पर नहलाते रहना चाहिए तथा अंतर परजीवियों से बचाव हेतु कृमि नाशक दवा को हर 6 माह पर खिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में पशुओं को आहार सुबह और शाम देना चाहिए, जिससे कि उनकी आहार ग्रहण क्षमता सामान्य बनी रहे। यदि पशुओं को हरा चारा दलहन वाली फसलों से प्राप्त होता है तो उसे सुबह शाम देने से दूध उत्पादन अच्छा बना रहता है। गर्मी के मौसम में पशुओं से 3 बार दूध निकालने से भी पशु अच्छा महसूस करता है। अतः किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में यदि हम पशुओं में उचित देखभाल एवं उनके रहन सहन एवं खाने पीने की व्यवस्था मौसम के हिसाब से कर लेते हैं तो पशुओं में गर्मी के मौसम में भी अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं तथा पशुओं के स्वास्थ्य को भी गर्मी के मौसम में अच्छा रख सकते हैं। अतः इस मौसम में उचित प्रबंधन के द्वारा पशुपालक अपने पशुओं में दूध उत्पादन की गिरावट को रोककर दूध से होने वाली आय को बढ़ा सकते हैं तथा अधिक मुनाफा कमाकर अपने आप को खुशहाल एवं समृद्ध बना सकते हैं।
1: गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोता अभी सुन रहे थे जानकारी डॉक्टर रिपुसूदन कुमार से। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। नीचे सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे, रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर में आज सुनिएगा देवेश चंद्र और साथियों का गाया कुमाऊनी लोकगीत। युवा साथी युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा विश्व साइकिल दिवस। साइंस का संसार और आज का इतिहास भी युवा साथियों के लिए लेकर हम आएंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा रहेगी विश्व साइकिल दिवस पर। भक्ति संगीत में कुछ भजन आज आप सुनेंगे। संध्या 6:41 पर कलाकार होंगे मोहम्मद रफ़ी और हरिओम शरण। संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित होता है, जिसमें आज की बातें होंगी गर्मियों में पशुधन सुरक्षा विषय पर। चर्चा सुनिएगा किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ विषय पर। रात्रि 8 बजे लोकगाथा नल दमयंती का 11वां और अंतिम भाग आज श्रोताओं के लिए हम लेकर आएंगे। संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में फिल्म संगीत और रात 10:30 पर भी फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे। सुगम संगीत रात 10 बजे प्रसारित होगा। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज के फनकार हैं जानी मानी अभिनेत्री प्राची देसाई। श्रोताओं, प्राची देसाई ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2006 में टेलीविज़न धारावाहिक कसम से की थी और उस समय वो मात्र 17 साल की थी। इस शो के जरिए उन्होंने बेहद ख्याति प्राप्त की और घर घर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिल्मों की बात करें तो साल 2008 में फिल्म रॉक ऑन से बॉलीवुड में उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बेहद सफल रही और ये फिल्म जाने माने लेखक जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर की भी डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म के ज़रिए प्राची देसाई को अपने करियर की उड़ान भरने में एक पहचान मिली।

शुदों साल 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ नज़र आई प्राची देसाई और उनके इस फिल्म में जो उन्होंने किरदार निभाया उस किरदार को भी दर्शकों ने खूब सराहा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का आईफा अवार्ड भी उन्हें प्राप्त हुआ और इस फिल्म में वो एक गैंगस्टर की प्रेमिका की भूमिका में नज़र आई थी।

तो श्रोताओं, प्राची देसाई ने रॉक ऑन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन, आई मी और मैं, पुलिस गिरी, रॉक ऑन टू, एक विलन, अजहर लाइफ पार्टनर जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का

श्रोता भी एक ही फनकार सुन रहे थे और आज फनकार थी जानी मानी अभिनेत्री प्राची देसाई। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3, लेकर हम आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

किशोर, युवा, फिर बड़ी उम्र, यानी हर उम्र सभी के लिए बेहद सुविधाजनक, आसान, कम खर्च में अधिक फायदे दिलाती, ट्रिंग ट्रिंग की मिठास घोलती साइकिल की आवाज से, या यूं कहिए कि साइकिल से हम सभी रोज ही रूबरू होते हैं। लेकिन आज खास है साइकिल का सफर, क्योंकि आज है विश्व साइकिल दिवस। और फिल्मी दुनिया की बात करें तो खासकर गोल्डन एरा में, यानी उस दौर में साइकिल की सवारी से सजे ना जाने कितने तराने आपने सुने होंगे। अभिनेता अभिनेत्रियों पर फिल्माए गाने आज, जो कि साइकिल पर ही फिल्माए गए हैं, सदाबहार फिल्मी गीत में उन्हीं नगमों से गुलजार है सदाबहार फिल्मी गीत। तो सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं साल 1952 में, और इस समय तो भाई साइकिल जो थी वो सबसे खास सवारी हुआ करती थी सभी की। और जाहिर है, जब हमारी ज़िंदगी में साइकिल है तो फिल्मों में साइकिल का होना लाजमी है। और उस दौर में एक फिल्म आई, यूं तो कई फिल्में, लेकिन मैं जिस फिल्म का जिक्र कर रही हूँ वो फिल्म थी अजीब लड़की। शमशाद बेगम, जीएम दुर्रानी ने इस गाने को गाया, और साइकिल की ही बात इस गाने में है। अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो शायद याद आ जाए जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी।

सभी श्रोताओं को अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार। सदाबहार फिल्मी गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आपने ज़रूर अभी सुना होगा साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक छोटे से बच्चे की सवारी से शुरू होता साइकिल का सफ़र।

भाई साइकिल का पहिया रोक ले, ये बात अजीब लड़की फिल्म में अभी आपने सुना शमशाद बेगम और जी एम दुर्रानी की आवाज़ों में। अब चलते हैं साल 1960 में। इस साल एक फिल्म आई बेवकूफ़, और फिल्म बहुत अच्छी थी। बेवकूफ़ भले ही नाम इस फिल्म का है। किशोर

0: कुमार माला सिन्हा और प्राण इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में जो गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं वो भी साइकिल की दास्ता कहता अपने आप में बहुत ही मशहूर गाना है। माइकल है तो साइकिल है, आइए सुनते हैं।
1: हट जा पुत्ता प्यार ये ओए ओए ओए ओए ओए ए बज्जा कर्मा वाली
2: माइकल है तो साइकिल है माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं माइकल है तो साइकिल है माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं दिल है तो दिलदार भी है
3: दिलदार नहीं तो दिल भी नहीं
2: दिल है तो दिलदार भी है
3: दिलदार नहीं

0: माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं, दिल है तो दिलदार भी है,
1: दिलदार नहीं तो दिल भी नहीं,
0: दिल है तो दिलदार भी है,
1: दिलदार नहीं।

0: अरे बादल है तो बरखा है,
1: बरखा जो नहीं बादल भी नहीं।
0: माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं।

0: मोहब्बत का तूफान हूँ मैं एक रोज आइए, उल्फत का तूफान हूँ मैं एक रोज आइए, लहरों में आके मेरी झूल झूल जाइए।
1: उल्फत की मौज बनके मौज में ना झूलना, गंगा हो पीठ के मैं ये न भूल जाइए।
0: अरे जल है तो गंगा भी है,
1: गंगा ही नहीं तो जल भी नहीं।
0: माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं।

1956 में आई फिल्म एक ही रास्ता हिंदी सिनेमा के उन ख़ास गानों में ये एक है जिसमें ख़ास तौर पर साइकिल का ही इस्तेमाल किया गया है। सांवली सलोनी दिन आए बहार के ये बेहद खूबसूरत सा गाना है जिसमें अपने आप में एक बड़ा सुकून देता गाना है। अगर इस पिक्चर को हम देखें या इस गाने को सुनें दोनों ही अपने आप में एक खूबसूरत एहसास करा जाते हैं। और एक छोटा सा खुशहाल परिवार जिसमें माता पिता यानी सुनील दत्त और मीना कुमारी द्वारा अभिनीत ये फिल्म है और साथ में एक छोटी सी बच्ची डेजी ईरानी शामिल हैं और ये तीनों बैठे हैं साइकिल पर और पिकनिक पर जाते हैं हरे भरे ग्रामीण इलाकों में साइकिल चलाते हुए। छोटा सा बच्चा हारमोनिका बजाता है जबकि माता पिता जो है प्रकृति का आनंद लेते हुए एक साथ मिलकर परिवार जो खुशहाली का संदेश देता है और ये प्यारा सा गीत वो सुनाते हैं। हम भी आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से निपटने के लिए हमारे देश के कई प्रमुख शहर अब अपनी सड़कों का कायाकल्प कर रहे हैं और इनका मकसद लोगों को पेट्रोल डीजल की गाड़ियां छोड़कर साइकिल अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साइकिल चलाने वालों को बढ़ावा देने के लिए सड़कों को खास तरीके से रीडिज़ाइन किया जा रहा है ताकि लोग साइकिल की तरफ आकर्षित हों, क्योंकि साइकिल जहां पेट्रोल डीजल का खर्च बचाती है वहीं आपकी सेहत को भी तंदुरुस्त रखती है। तो ऐसे में साइकिल दिवस का यही संदेश है और हर साल ये एक थीम के साथ ये दिवस मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है वो है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। सच में अगर हमें आने वाले कल को अपना संवारना है, सजाना है, हरियाली से भरपूर रखना है तो साइकिल उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस ज़रूरत है कि हम नागरिक साइकिल की सवारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। बहरहाल हम गानों की तरफ, तरानों की तरफ थे और बातें कर रहे थे उन गानों की जिन गानों में साइकिल का जिक्र है या साइकिल पर अभिनेता अभिनेत्रियों को फिल्माया गया है। तो साल 1959 में भी एक बेहद चर्चित फिल्म आई थी अनाड़ी और इस फिल्म का भी एक बेहद मशहूर गाना है बनके पंछी गाए प्यार का तराना। और सिनेमा को आप देखिए, चाहे वो सिनेमा हो या हमारी वास्तविक ज़िंदगी की बात हो, दोनों में ही साइकिल महिलाओं के लिए एक तरह आज़ादी का प्रतीक रहा। और एक ऐसे परिवार की युवती जो कार या स्कूटर या मोपेड खरीदने की आर्थिक स्थिति में नहीं थी लेकिन उसे साइकिल मिल जाती थी तो वो कॉलेज या स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या फिर किसी पुरुष रिश्तेदार पर निर्भर नहीं रहती थी बल्कि वो खुद अपनी साइकिल उठाती और चल पड़ती। और हिंदी सिनेमा में युवती की साइकिल महिलाओं के बीच आपसी जुड़ाव का भी एक जरिया बना। और जब सहेलियां आपस में कहीं जाती, चाहे वो स्कूल ही जा रही हों या फिर कहीं पिकनिक में तो या फिर अकेले ही, तो साइकिल चलाते हुए गाने गाते हुए वो पूरी आज़ादी के साथ निकल पड़ते। तो कुछ ऐसा ही संदेश अनाड़ी फिल्म में, आइए सुनते हैं इस गाने के साथ।

चलिए साइकिल की सवारी से सजा एक और गाना सुन लेते हैं। 1964 यानी 1964 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई और गाना था चल मेरे दिल लहरा के चल, और कुछ इस तरह से लहरा के चल कि साइकिल की सवारी के साथ ही चल। जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया ये गाना, दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चलाते खुशी खुशी ये गाना गाते हुए उस दौर में रहा। और ये गाना भी बहुत ख़ास है साइकिल के लिए, तो आइए सुनते हैं। फिल्म है इशारा।

श्रोताओं, पिकनिक की बात हो तो उस दौर में साइकिल का बड़ा ही उपयोग होता था, क्योंकि सभी सखियां हो चाहे सखा हो, सभी साइकिल पर ही अपनी सवारी के साथ निकल पड़ते थे घूमने फिरने। और पिकनिक फिल्म भी आई थी साल 1966 में, और इस साल जो फिल्म आई, इस फिल्म में एक गाना था आंचल को उड़ने दो। ये सभी सखियां जो है मिलकर कहीं सैर पर निकल रही हैं, शायद पिकनिक की ओर, और ये पूरा जोश से भरा हुआ जोशीला गाना है। और सभी दोस्त जो है पूरी आज़ादी के साथ पूरे प्रकृति का आनंद लेते हुए, ज़िंदगी का मौज मनाते हुए, ज़िंदगी की रफ्तार को महसूस करते हुए बड़े ही खूबसूरत ढंग से इस गाने को एंजॉय कर रही हैं। और कुछ ऐसा समय है कि साइकिल भी साथ में है, तो आइए सुनते हैं ये गाना पिकनिक फिल्म से।

और अब श्रोताओं, साल 1971 की तरफ चलें और इस साल आई फिल्म तेरे मेरे सपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में एक खूबसूरत गाना इस फिल्म से है, जो कि साइकिल की सवारी के साथ

साथी है। देवानंद साहब ने जब तेरे मेरे सपने फिल्म बनाई तब वो अपने सुनहरे दौर से गुजर रहे थे और इस फिल्म का संगीत यूँ तो बेहद यादगार रहा, लेकिन ख़ास तौर पर इस गाने का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें साइकिल की सवारी की गई है। तो ये एक बेहद सुरीला युगल गीत है जिसमें अभिनेता अभिनेत्री यानी मुमताज और देवानंद साइकिल की सवारी कर रहे हैं और पीले पीले सरसों के खेतों से गुजरते हुए अपने प्यारे से गीत को गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही गीत फिल्माया गया है, तो आइए सुनते हैं तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गाना साइकिल पर।

तो श्रोताओं, साइकिल दिवस को खास बनाइए, साइकिल की सवारी के साथ आप भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे शामिल कीजिए। आज सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में साइकिल के साथ तरानों का सफ़र यहीं तक। अंजू पांगती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारा ये प्रसारण आप मीडियम वेव 187.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी के बागेश्वर FM 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजने को है अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है।

0: इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटना क्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों के गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। अब सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर और हमारे आज के कलाकार हैं देवेश चंद्र व साथी।

दिवेश चंद्र व साथियों के गाय इसी कुमारी लोकगीत के साथ हमारा आज का शैल स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है इस सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स केंद्र, रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय, ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। आज शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ देर बाद शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा विश्व साइकिल दिवस, साइंस का संसार और इतिहास के पन्नों से जानेंगे आज का इतिहास। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं रोजाना शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व साइकिल दिवस। शाम 6:41 पर सुनिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत। आज के कलाकार होंगे मोहम्मद रफ़ी और हरिओम शरण। शाम 7:00 ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी गरीबों में पशुधन सुरक्षा, साथ ही चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ विषय पर। लोक गाथा नल दैमंती का अंतिम भाग सुनिएगा रात्रि 8:00। फिल्म संगीत कान लीजिएगा शाम 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के तहत। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। ये थे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है प्रातः 5:53 पर। विचार बिंदु आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनिएगा कल प्रातः 6:10 पर। संदेश टू सोल्जर्स सुनिएगा कल शाम 4:00। कल रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, रात्रि 10:00 सुनिएगा क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रीमती सौम्या मिश्रा के मैथिली लोकगीत एवं संगीत संयोजक विजय कुमार सामंत रॉय के आधुनिक उड़िया गीत, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कल संध्या 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। विविधा आप सुनेंगे कल प्रातः 6:50 पर। आज की बात का समय रहेगा कल प्रातः 6:05 पर। श्री रामचरितमानस गानपाठ का भाग 114 आप सुनेंगे कल प्रातः 7:10 पर। हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा सुश्री विनीता जोशी का काव्य पाठ कल प्रातः 7:50 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे कल प्रातः 8:30 पर। खेती की बातें ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 2:30 पर। इसमें वार्ता का विषय रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में जैतून की खेती विषय पर डॉक्टर राकेश मीर से जानकारी। महिलाएं सुनती है अपना कार्यक्रम एपण दोपहर 12:30 पर। इस कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय रहेगा ऊर्जा संरक्षण से सुरक्षित भविष्य और गैर संचारी रोग, साथ ही बहनें सुनेंगी आत्मनिर्भरता से सशक्त बनती

ग्रामीण महिलाएं विषय पर बालाजी स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष श्रीमती मुन्नी रावत से मंजू बोरा की क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1299 कड़ी आप सुनेंगे कल दोपहर 1:30 पर। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5 हिंदी समाचारों के साथ, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी, जिसके अंतर्गत आज की बात का विषय रहेगा पर्यावरण के लिए जीवन शैली। रोजगार समाचार और इतिहास के पन्नों से जानेंगे दिन विशेष का इतिहास। शाम 5:45 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा अतिक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कल संध्या 6:41 पर सुनेगा कार्यक्रम भक्ति संगीत, कलाकार होंगे विजय शर्मा व पंडित भीमसेन जोशी। कल शाम 7 ग्रामीण किसान श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज की बातें का विषय रहेगा कृषि में नवाचार और लाभ। साथ ही क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता में सुनिएगा खेती बचाओ अभियान, टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ, फसल चक्र, संरक्षण जुताई। और भेंटवार्ता के क्रम में सुनेंगे पहाड़ी महिला कृषकों के लिए पशुपालन संबंधित श्रम साध्य काम कार्य कम करने वाली प्रौद्योगिकी विषय पर डॉक्टर दीप्ति कोठारी से भेंटवार्ता। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कल प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम लोकमंजरी में, सुबह 11:30 पर लोकसुर में, दोपहर दो बजे उत्तराखंड के लोकगीत में, और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के तहत। कल सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरंग, सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 1:15 पर, और रात्रि 8 सुनेंगे कार्यक्रम सबरस, धरोहर का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का लीजिएगा कल सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम में, सुबह 11 सैनिक भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए, दोपहर 12 मेरी पसंद, दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3 सदाबहार फिल्म गीत, शाम 7:40 पर फिल्म संगीत, रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम इंद्रधनुष के तहत। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब एक जरूरी सूचना, कृपया ध्यान दें, मोहन सिंह कन्याल पुत्र स्वर्गीय श्री भूपाल सिंह कन्याल निवासी ग्राम नौगढ़ स्ट्रीट कोतवाली कौसानी जिला बागेश्वर, उम्र 40 वर्ष, जो दिनांक 14 अप्रैल 2026 को अपने घर नौगढ़ स्ट्रीट से बिना बताए कहीं चले गए हैं, जिनका पहनावा नीला शर्ट, सफ़ेद पैंट और चप्पल है, हुलिया, कद 5 रंग सांवला। यदि आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो आप कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। SHO कोसानी संपर्क नंबर है 9411113364। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9411113364। और एक अन्य नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर इस प्रकार है 7983559399। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 7983559399। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। दोस्तों आज मेरे साथ आप एक कल्पना कीजिए, सुबह की सुनहरी धूप, ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, सड़क के दोनों ओर हरियाली मुस्कुरा रही है और आप अपनी साइकिल के पैडल पर कदम बढ़ाते हुए आगे

बढ़ें। ना पेट्रोल की चिंता ना ट्रैफिक का शोर, बस आप, आपकी साइकिल और आज़ादी का एहसास। दोस्तों, इसी एहसास को सेलिब्रेट करने के लिए हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, साइकिल सिर्फ दो पहिया वाहन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, खुशहाल जीवन की ओर बढ़ता हुआ एक सुंदर कदम है और साथ ही एक ऐसा साधन है जो सस्ता, सुलभ, पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक है। दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज़मर्रा की यात्रा के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। साइकिल के इन्हीं लाभों को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2008 से विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को साइकिल के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और प्रदूषण मुक्त परिवहन के महत्व को समझाना है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते हुए प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब साइकिल एक सरल लेकिन प्रभावशाली समाधान बनकर सामने आती है। दोस्तों, खुद सोचें, जब भी हम कभी साइकिल चलाते हैं तो हमारा शरीर कितना एक्टिव महसूस करता है, मन भी प्रसन्न रहता है और साथ ही प्रकृति भी मुस्कुराती है। यही नहीं दोस्तों, बचपन की यादों में भी साइकिल का एक खास स्थान होता है। वो पहली बार बिना सहारे के साइकिल चलाने का एक्साइटमेंट, दोस्तों के साथ रेस लगाने की मस्ती और गलियों में घंटी बजाते हुए निकलने का आनंद, ये ऐसी यादें हैं जो कभी भी पुरानी नहीं होती। और आज के डिजिटल युग में जहां हम घंटों मोबाइल और स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं एक राउंड साइकिल चलाना कहीं ना कहीं हमें प्रकृति, अपने बचपन और बेहतर स्वास्थ्य से जोड़ता है और हमें बताता है कि असली खुशी कभी कभी बहुत ही साधारण चीज़ों में छिपी होती है। और साथ ही दोस्तों, बता दें कि साइकिल दुनिया के सबसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों में से एक है। ये न धुआं छोड़ती है, ना शोर करती है और ना ही इसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, चलिए इस विश्व साइकिल दिवस पे फिर से महसूस करते हैं वो ताजगी, आज़ादी और खुशी जो दोपहिए की इस अनोखी सवारी के पीछे छिपी है। दोस्तों, ये था हमारी आज की बात। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

0: दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज के विशेष अंक साइंस के संसार की। और आज साइंस के संसार में हम बात करेंगे साइंस की एक ऐसी ब्रांच की जिसने चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण और उद्योग के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है, और ये विषय है बायोटेक्नोलॉजी। और इसी विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं देवश्री मेहता। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं देवश्री मेहता, जो कि बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। देवश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में।
1: थैंक यू मैम।
0: तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं देवश्री से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़े डिटेल में। देवश्री, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या?
1: मैम, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके ह्यूमन लाइफ को हम बेटर बनाया जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
0: जी, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं है, हमारी ज़िंदगी का भी अहम हिस्सा है। देवश्री, आपको बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को चूज़ करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला?
1: मैम, आजकल बहुत से स्टूडेंट्स नीट के थ्रू मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, और मैं भी बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड थी, लेकिन मुझे सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डिजीज़, बीमारियों के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट और रिसर्च के पीछे का साइंस भी समझना था। जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना तो मुझे लगा कि

0: फील्ड हेल्थ केयर और इनोवेशन को कंबाइन करती है और सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस करने का मौका देती है। इसी वजह से मैंने बायोटेक्नोलॉजी चूज किया।
1: जी ये तो बहुत बढ़िया है देवश। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है?
0: मैम जैसे ही आप देख सकते हैं, हम जो दही खाते हैं, वैक्सीन्स लगवाते हैं, हॉस्पिटल्स में ब्लड टेस्ट करवाते हैं या बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखते हैं मार्केटों में, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का होता है। कई बार हमें पता भी नहीं होता और बायोटेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का आसान बना रही होती है।
1: देवश्री जैसे आपने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन्स को डेवलप करने में मदद करती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि COVID-19 के दौरान बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल था?
0: मैम कोविड के समय बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैक्सीन्स डेवलप करना, टेस्टिंग किट्स बनाना और वायरस पर रिसर्च करना बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। इसी वजह से हम जो भी पैंडेमिक से बाहर निकलने में सफल रहे।
1: तो देवश्री आज के यूथ के लिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं?
0: आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है। यूथ के लिए इसमें हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, AI और रिसर्च जैसे एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नए मेडिसिन, वैक्सीन्स और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप करने में हो रहा है, इसलिए इस फील्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जो स्टूडेंट साइंस, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी एक प्रॉमिसिंग करियर चॉइस हो सकती है।
1: तो देवश्री अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। इस फील्ड में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स को क्यूरियस रहना चाहिए, नए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए और इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स या प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है, इसलिए लर्निंग माइंडसेट और अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: देवश्री क्या आप अपनी स्टडी जर्नी से कोई ऐसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो?
0: जी मैम, मेरी स्टडी जर्नी का सबसे इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस तब था जब मैंने पहली बार लेबोरेटरी में ब्लड टेस्टिंग प्रोसेस को क्लोजली ऑब्जर्व और परफॉर्म किया था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक छोटा सा ब्लड सैंपल भी किसी पेशेंट की हेल्थ के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं उन्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। इस एक्सपीरियंस ने हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के प्रति मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था।
1: देवश्री बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई ऐसा फैक्ट बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो।
0: मुझे बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये मेडिसिन्स और वैक्सीन्स बनाने से लेकर फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने तक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। मुझे ये बात काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है कि इतने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी ह्यूमन लाइफ पर इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं।
1: देवशी अगर आप कोई स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में जाएं तो आप उन्हें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताना चाहेंगी?
0: मैं उन्हें बताऊंगी कि साइंस सिर्फ बुक्स और एग्जाम्स तक सीमित नहीं है, साइंस हमारे आसपास हर जगह है। अगर हम सवाल पूछते रहे और सीखते रहे तो हम भी किसी नई डिस्कवरी का हिस्सा बन सकते हैं।
1: देवश्री आखिर में आप हमारे दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि बायोटेक्नोलॉजी एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है जिसमें लर्निंग और इनोवेशंस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप में क्यूरियोसिटी है और कुछ नया करने का पैशन है तो ये फील्ड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ दे सकती है।
1: देवश्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।
0: थैंक
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारी बातचीत बायोटेक्नोलॉजी विषय पर देवश्री मेहता से।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और

0: स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की ओर और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्नों में। आज ही के दिन वर्ष 1937 में वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के दो हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था। इस बंटवारे में लाखों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया था। आज ही के दिन वर्ष 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर बनी थी। वे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। आज ही के दिन वर्ष 1965 में एड वाइट स्पेस में चलने वाले पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बने थे। आज ही के दिन वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी थी। दोस्तों ये था हमारा आज का इतिहास। अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर एक गीत के साथ।

दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया भारत का नया राज्य कौन सा था, जिसका सही उत्तर है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया भारत का नया राज्य तेलंगाना था। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी जगदीश जौहरी, कांटा रोड वाशिम से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, मायरा सुरेशे। दोस्तों, इसी क्रम में नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411100112 पर। सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के हैं हरी सिंह सिजवाली नमस्कार। श्रोताओं, आज विश्व साइकिल दिवस छू और यह विशेष दिन हर साल 3 जून हूँ पूरे विश्व में मनाई जा। यो दिन के मनोना उद्देश्य साइकिल के एक सरल, किफ़ायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल स्थायी ऊर्ण जनक साधनक रूप में मान्यता दें छू। यो पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ावा देने के लिए और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य प्रति जागरूक करने के लिए छू। श्रोताओं, भारत में पहल साइकिल साल 1890 में मुंबई की सड़कों में चले। उ वक्त भारत में इतुक ज़्यादा आवागमनक संसाधन नहीं थी। श्रोताओं, साइकिल एक यश संसाधन छू जो बिना तेल या ईंधन का चले, जेल ऊन जनक पैसने भल बचत ले है सकें। एक अलावा यह कम खर्च वाले वाहन होनक दगड़ी टिकाऊ किफ़ायती ले छे। सबसे ठूल बात तो यह छू कि साइकिल हमारे पर्यावरण के नुकसान नहीं पहुँचूँ और आसपास जानक लीजिए साइकिल बहुत फल साधन छू जो कम खर्च में बिना तेल बिना धूं वाल वाहन छ। यह उपयोग आजक वक्त में करण बहुत जरूरी छू जब पर्यावरण के खराब या दूषित करने वाले कई वाहन आज हम सब मन की अपनों लग रहे हैं। तो श्रोताओं, यह तो अच्छी बातचीत कार्यक्रम में अगला गोष्ठ लग रहा गोकुल बिष्ट और दगड़ियों गई यह लोक गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला भूख सुन लग रहा दीपा चौहान गई यो गढ़वाल लोक गीत
3: और बीआईएस।

0: श्रोता वल्लभ सुनो दीपा चौहानक स्वर में ये गढ़वाल लोक गीत और कार्यक्रम में अघिला पुलिस जी बेरा रहा यह भेंटवार्ता ग्राम विकास में स्वच्छता के महत्व विषय पर ग्राम विकास अधिकारी लमगाड़ श्री मनीष रावत जुंदगढ़ करी गई भेंट। भेंटवार्ता में उपस्थित हैं विकासखंड लमगड़ा में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी श्री मनीष रावत जी। रावत जी नमस्कार।
1: धन्यवाद हरीश भली जी, आपने मुझे आमंत्रित किया।
0: रावत जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम उत्तरायण में। रावत जी आप ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं आपके विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं?
1: सिज्वाली जी, हमारे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण विकास पर बहुत जोर दिया जाता है और ग्रामीण विकास से संबंधित हमारे विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं जैसे महात्मा गांधी नरेगा
0: जी,
1: और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और जो हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी जो गांव का विकास करने के लिए धनराशि विकासखंडों को मुहैया कराते हैं तो उस योजना पर भी काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त बायोगैस कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जाता है, और इसके अतिरिक्त दीनदयाल कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, और इसके अतिरिक्त मेरी गांव मेरी सड़क योजना, और इसके अतिरिक्त भी पलायन आयोग के द्वारा भी जो हमें कार्य दिए जाते हैं उस पर भी हम सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य हैं जो समय समय पर हमें दिए जाते हैं
0: जी।

0: मनरेगा योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आपके विभाग द्वारा कराए जाते हैं और इसका संचालन कैसे होता है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को ये जानकारी देंगे आप।
1: श्री ज्वाली जी, महात्मा गांधी नरेगा, जिसे शॉर्ट में हम मनरेगा भी बोल देते हैं, ये एक कानून है।
0: जी
1: ये कानून पारित हुआ था सितंबर 2005 में। देखिए, जो ये कानून है, ये जो अधिनियम है, ये ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोजगार के कारण कानूनी गारंटी देता है।
0: जी।
1: जो रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों को यह कार्य दिया जाता है।
0: जी।
1: तो इस योजना में हम ग्रामीण ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा को संचालित करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत कार्य और सामुदायिक विकास के कार्य भी किए जाते हैं। व्यक्तिगत कार्य में जैसे पशु बाड़े का निर्माण करना, पशु बाड़े में जैसे बकरी बाड़ा, गौशाला, मुर्गी बाड़ा, तो इनका निर्माण किया जाता है।
2: और इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शौचालय का निर्माण भी किया जाता है, जिसमें मनरेगा अंश से 12,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
1: इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत कार्यों में खेतों की सुरक्षा दीवार के कार्य भी किए जाते हैं और सामुदायिक कार्य में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जिसमें हम ऐसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं जो भविष्य में भी उन ग्रामीण लोगों के लिए ग्राम पंचायत के काम आ सके। जैसे कि हम आंगनबाड़ी का निर्माण करते हैं और इसके अतिरिक्त भूमि सुधार के कार्य करते हैं, वनीकरण के कार्य करते हैं, चेक डैम का निर्माण के कार्य, खाल खंती निर्माण कार्य, बच्चों के लिए खेल मैदान का निर्माण कार्य, तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त समूह की महिलाओं को भी मनरेगा के द्वारा विशेष तौर पर उनको भी हम योजनाओं से लाभान्वित करते हैं।
0: मनीष जी, स्वच्छता से संबंधित क्या क्या कार्य आपके विकास खंड में किए जा रहे हैं?
1: सिजोली जी, स्वच्छता हमारा सबसे पहली बात तो है, ये हमारा प्रमुख एक मानव सभ्यता का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता है तो हमारा स्वास्थ्य है और सब कुछ है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमारा विकास खंड समय समय पर स्वच्छता से संबंधित कार्य करता है। जैसे जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, चाहे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, तो इन दिनों पर हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे विकासखंड में ही हमारे एक पंचायती राज विभाग भी है, तो उनके द्वारा ग्राम पंचायत में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कूड़ेदान का निर्माण किया गया है। आप इन्हें देखे होंगे, हर ग्राम पंचायत में कूड़ेदान का निर्माण किया गया है। सूखा कूड़ा और गीला कूड़े को निस्तारित करने के लिए उन कूड़ेदान का निर्माण किया गया है। और इसके अतिरिक्त हमारे विकासखंड स्तर पर, लमगढ़ विकासखंड स्तर पर एक कॉम्पैक्टर का भी निर्माण किया जा रहा है, ये ढोरा ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, जिसमें पूरे विकासखंड में जितना भी प्लास्टिक कूड़ा होगा तो उसे वहाँ कॉम्पैक्टर में लाया जाएगा और उसे कॉम्पैक्ट करके तो उस प्लास्टिक को अन्यत्र कहीं यूज के लिए, मतलब यूजफुल बनाया जाएगा उस प्लास्टिक को। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य हमारे विकासखंड के द्वारा स्वच्छता पर किए जा रहे हैं।
0: जी जी मनीष जी, आपके द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना बताई गई NRLM में,
1: जी
0: तो NRLM में आपकी क्या भूमिका है?
1: सर, NRLM का जो पूरा नाम होता है वो होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। NRLM का जो मुख्य उद्देश्य है ये है, हमारे जो गांव की महिलाएं हैं उनका आजीविका संवर्धन करना। आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लखपति दीदी योजना पर बहुत जोर दे रहे हैं, तो लखपति दीदी योजना भी NRLM का ही एक भाग है। तो इसमें जो हमारा जो कार्य होता है वो होता है ग्राम पंचायत स्तर पर जो गांव की महिलाएं हैं हमारी, तो उनके समूह का निर्माण करना और उन समूह को हम प्रशिक्षित करते हैं, और ताकि प्रशिक्षण इस मामले में कि वो कुछ अपना नया स्वरोजगार स्थापित कर सके, अपनी आय बढ़ा सके। और हम उन जो वो समूह हैं उन्हें हम बैंकों के द्वारा आपस में जोड़ते हैं, जहां से उन्हें ऋण आदि प्राप्त होता है और वो स्वरोजगार से संबंधित अपने कुछ भी कार्य कर सकते हैं।
0: मनीष जी, आप हमारे ग्रामीण अंचलों में रह रहे ग्रामीण लोगों को क्या क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: सिजोली जी, मैं हमारे जो गांव के हमारे ग्रामीण हैं तो मैं उन्हें एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे ग्राम पंचायत में खुली बैठकों का आयोजन किया जाता है, समय समय पर खुली बैठकें होती रहती हैं, तो आप खुली बैठक में प्रतिभाग जरूर कीजिएगा। वो खुली बैठक आपके लिए है। आप जितना उस खुली बैठक में जाएंगे आपको पता रहेगा कि आपके ग्राम पंचायत में क्या कार्य हो रहा है। और जब वहाँ खुली बैठक में योजनाएं बन रही होती हैं, मतलब किसे क्या योजना दी जाएगी, कहाँ क्या कार्य किया जाएगा, तो वहाँ पर आप प्रतिभाग करें। तो हमारा तो यही कहना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, और पात्र व्यक्ति तभी नहीं छूटेगा जब वहाँ वो प्रतिभाग करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि वो खुली बैठक में प्रतिभाग करें, और एक परिवार से एक जना तो प्रतिभाग करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त गाँव की स्वच्छता को बनाए रखें।
0: मनीष जी, आपके द्वारा

0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, हमारे श्रोता इससे जरूर लाभान्वित होंगे। हमारे साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष वाली जी।
0: श्रोताओं लोगों सुनो, ग्राम विकास में स्वच्छता के महत्व विषय पर ग्राम विकास अधिकारी लमगढ़ श्री मनीष रावत जुंदगढ़ी करी गई भेंट, और कार्यक्रम में अगला बोको सुनो लग रहा विमला बोरा और दगड़ियों गई ये लोकगीत।

0: श्रोता लोगों सुनो विमला बोरा और दुगड़ियों गई ये कुमाऊनी लोकगीत।
1: गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: आज हमारे साथ श्रोताओं आपको सब जानना है कि सरकार द्वारा चलाई गई नंदा बोरा कन्याधन योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाले बालिकाओं के सरकार यह योजना का लाभ देने के लिए जी आजकल फॉर्म भरने लग रहे हैं, और यह अंतिम तिथि 30 नवंबर तक छू। हर साल यह योजना के तहत कई बालिका अखिल अपन शिक्षा पूर्ण करने के लिए जी यह योजना का फायदा लेने लग रही। यह तहत कुछ बदलाव करी जा रही जिस कारण कई बालिकाओं के संकोच ल छू, तो आपू कह कई नई प्रारूप में फॉर्म भरण छू। एक दगड़ी आपू कह अपन माता पिता और बालिका तीनों बैंक विवरण 3 सालों मनरेगा जॉब कार्ड अगर छू तो यो ले आपू कह लगवाण छू। भूमि प्रमाण पत्र व आवास प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी कर्मचारी हस्ताक्षर करा भी आपू को लगवाण छू। भवनक एक फोटो, बिजली पानी पुराण 3 महीना बिल यो ले लगवाण छन। एक अलावा आपू अपन आंगनबाड़ी और प्रधान जी द्वारा ले सत्यापित करला यो फॉर्म पे कि भूमि और भवन और अविवाहित प्रमाण पत्र ले आपूल बढ़ोन छू। आय, जाति, चरित्र, स्थाई, जन्म, परिवार रजिस्टर, अखिलेख शिक्षा पंजीकरण पत्र ले आपू के यो फॉर्म नगर लगोन छे। और एक अलावा शपथ पत्र और सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी सेक डाटा जैसे कही जा, पारिवारिक स्थिति प्रमाण पत्र जो मिलो आपू के यो विकास खंड स्तर बटी एक आपू बढ़ा सकता। तो यो योजना के तहत 51,000 रुपये धनराशि बालिकाओं के 12वीं बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाए। तो श्रोताओ आपू अगर ये योजना का फायदा लेना चाहता तो 30 नवंबर है पहली आपू उक्त सभी कागजों के बना भेद अपन आवेदन पत्र कहें अपन नज़दीकी बाल विकासक कार्यालय में ऑफलाइन और ऑनलाइन दिव्य तरीकों चम कर सकता। तो श्रोताओं ये तो अच्छी जानकारी। तो कार्यक्रम में अखिल आपको सुन लग रहा दीवान सिंह कनवारा गई ये लोकगीत।

श्रोताओं लोगों सुनो दीवान सिंह कन्वालक गई यो कुमाऊनी लोकगीत और कार्यक्रम में अगला आपको सुन लग रहा शंकर उप्रेती गई यो कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, शंकर उपेती गई यही लोकगीता की तगड़ी आज एक उत्तरायण कार्यक्रम संपन्न करना बखत है गो। भोल फिर भेंट होल, तब तक अगली जी हरी सिज वाली के दियो आज्ञा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया। कहा, देश में शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। यात्रा शुरू होने के मात्र 33 दिनों में जारी हुए 30,000 से अधिक इनर लाइन परमिट। स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटद्वार में निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन और चंपावत जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न जानकारी दी जा रही है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 29,78,00,000 रुपए लागत की 3 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शहर सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध होगा तो भारत विकसित राष्ट्र अवश्य बनेगा।
5: मेयर काउंसिल का सम्मेलन पूरे देश भर का आज योग नगरी ऋषिकेश में माँ गंगा के सानिध्य में यहाँ पर तट पर हो रहा है। पूरे देश भर में अनेक योजनाएं चल रही हैं, चाहे स्मार्ट सिटी मिशन हो, अमृत योजना हो, या वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम हो, स्वनिधि योजना हो, इन सब पर महामंथन हुआ है। और उसके पीछे हेतु है कि हर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को सुविधाएं मिले। उसमें निकाय हमारे अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से निकाय साफ स्वच्छ होंगे, मजबूत होंगे, तो विकसित भारत का संकल्प हमारा पूरा होगा।
4: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण कर चारधाम यात्रा और पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं से यात्रा का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बेहतर भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
5: व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं और यात्रा बहुत अच्छी हो रही है। बीच में संख्या अधिक होने के कारण से कुछ यात्रियों को थोड़ा परेशानियां भी हुई थी, लेकिन अब वो सभी व्यवस्थित कर ली गई हैं और आगे मानसून भी है और यात्रा की संख्या भी बढ़ रही है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए और यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आज भी अच्छे रजिस्ट्रेशन हुए, सभी लाइनें अभी पूरी हो गई हैं। जो लोग भी आए हैं उनको सबको दर्शन हो जाए, अच्छा दर्शन हो, किसी प्रकार की किसी को परेशानी न हो। सभी विभागों को भी कहा गया और मैं स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और इस बार रिकॉर्ड यात्रा हमारी हुई है और अच्छा व्यापारियों की दृष्टि से भी अच्छा हुआ है, हमारे होटल वाले, टैक्सी वाले, होम स्टे वाले।
4: पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। यात्रा शुरू होने के मात्र 33 दिन के भीतर जारी इनर लाइन परमिट का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। जिला प्रशासन के अनुसार पहली से 31 मई तक एक महीने की अवधि में देश के विभिन्न राज्यों से रिकॉर्ड लगभग 28,000 श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150% से अधिक वृद्धि को दर्शाता है।

0: राजस्थान से आए श्रद्धालु हेमंत ने शासन प्रशासन की ओर से की गई यात्रा व्यवस्थाओं की काफी सराहना की।
1: दर्शन काफी अच्छे हुए, रोड्स भी काफी अच्छी बनी हुई है। गवर्नमेंट ने रोड्स पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ऐसे एरिया जहाँ पे पहले लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते थे, वहाँ बहुत आसानी से जा सकते हैं। कुछ एक एरिया को छोड़ के बाकी सभी जगह रोड्स अच्छी थी, तो वो हमने देखा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और नियर बाई हो ही जाएगा इम्प्रूवमेंट। बाकी होम स्टे, फूड्स और बाकी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइड्स जो वहाँ दिए हुए हैं, जो चीजें, जो साइन बोर्ड्स वगैरह हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और नो डाउट फ्यूचर में ये और ज्यादा इम्प्रूव होंगे। तो मैं गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि हम जैसे लोग जो बहुत दूर से राजस्थान से चल के आए, वो भी यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं।
0: आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बन रही है, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को भी नई प्रगति प्रदान कर सीमांत क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। पौड़ी जिले में स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार में आज एक दिवसीय निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में निर्यात क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं और अवसरों की जानकारी दी। कार्यशाला में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण निर्यात हेल्प डेस्क का उद्घाटन रहा। अधिकारियों के अनुसार यह जिले में अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे निर्यातकों और निर्यात में रुचि रखने वाले उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन व तकनीकी सहायता एक स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। खेत बचाओ अभियान के तहत चंपावत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यशालाओं का आयोजन कर किसानों को मृदा परीक्षण के साथ ही पारंपरिक व जैविक खेती, कृषि से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज चौकुनी बोरा और मारा गांव में शिविर लगाया गया। मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के 42 गांवों का चयन किया गया है, जहां दो टीमों के माध्यम से एक एक शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में किसानों को प्राकृतिक व जैविक खेती, मृदा परीक्षण आदि के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक माह तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन विभिन्न जागरूकता और विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
3: कुल मिलाकर के ये जागरूकता का कार्यक्रम है, ताकि हमारे किसान भाइयों के ये बात अच्छे तरीके से आ सके कि हमें रासायनिक खादों को कम करते हुए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ना है, ताकि हमारी मृदा का स्वास्थ्य जो है निरंतर यानी चिरंतर बना रहे, यही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। इस कड़ी में हमने आज पहला कार्यक्रम 3 जून को जो है विकासखंड चंपावत के चैकुली बोरा गाँव में और विकासखंड पाटी के मारा गाँव, और इसमें काफी किसानों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया है।
0: वहीं चोकनी बोरा के प्रगतिशील किसान नीरज महर ने बताया कि खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में उन्हें प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ, मृदा परीक्षण, उर्वरक के उपयोग आदि की जानकारी दी गई।
4: हमारे गांव में खेत बचाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें कि कृषि विज्ञान, कृषि विभाग और मत्स्य विभाग और उद्यान विभाग से वैज्ञानिक आए हुए हैं, जिन्होंने हमें प्राकृतिक एंड जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई है। हमें बताया गया है कि हमें मार्केट की जो केमिकल्स वाली खादें हैं उनका उपयोग ना करके जैविक खादों का उपयोग करने के लिए हमें बताया गया, जिसमें कि हमें बताया कि गाय का गोबर होता है उसका ही ज़्यादा यूज करें, ना कि मार्केट की जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करें, क्योंकि मार्केट की दवाई हमारी मिट्टी को ख़त्म करती हैं और हमारे जो गोबर की खाद होती है वो उपजाऊ बनाती है हमारी मिट्टी को और बचाए रहते हैं लंबे टाइम तक।
0: बागेश्वर जिले के युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसरों से जोड़ने और विदेशी भाषाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सेवा योजन विभाग द्वारा जिला मुख्यालय में जापानी भाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में 40 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों को जापानी भाषा के महत्व, जापान में बढ़ती रोजगार संभावनाओं और भाषा प्रशिक्षण से मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला सेवा योजन अधिकारी प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।
5: जापान में जो केयर गिवर पद है उसके लिए हमारे पास रोजगार अवसर हैं, तो उसमें भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो आज यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बच्चों को बुलाया गया है और जो इंटरेस्टेड भी हैं बच्चे उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके के रोज

0: रोजगार अवसर है क्या, यहाँ पर जो है जापानी भाषा आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे रोजगार से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था।
1: कार्यशाला में शामिल छात्रों ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी सफल करियर के लिए आवश्यक हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया। कहा, देश में शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। यात्रा शुरू होने के मात्र 33 दिनों में जारी हुए 30,000 से अधिक इनर लाइन परमिट। स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटद्वार में निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन और चंपावत जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

हरिओम शरण के गाय इसी भक्ति वंदन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 होने को है। कुछ देर में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटाया गढ़वली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में रुचि रावत। पहल मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल वेन बोली, प्रत्येक शहर सशक्त सुरक्षित और समृद्ध वालू तो भारत विकसित राष्ट्र जरूर बनलो। राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों का छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की बारीकियां सीखला। उद्यम सिंह नगर जिला का ग्राम बागवाला मां प्रधानमंत्री आवास योजना का अंतर्गत बढ़न वालो 1872 आवास को काम अंतिम चरण मा। और स्थानीय उद्यमियों थे वैश्विक बाजारों से जुड़न और निर्यात गतिविधियों थे बढ़ावा देने का उद्देश्य से कोटद्वार मां निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला को आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया। ये अवसर पर उन 29 करोड़ 78 लाख रुपया लागत की 3 योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में भारत में शहरी विकास का क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करे जाना। उत्तराखंड में स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत मिशन जन विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रत्येक नागरिकों तय दे जानो। उन बोली कि प्रत्येक शहर सशक्त सुरक्षित और समृद्ध वालू तो भारत विकसित राष्ट्र अवश्य बनलो।
1: मेयर काउंसिल का सम्मेलन पूरे देश भर का आज योग नगरी ऋषिकेश में माँ गंगा के सानिध्य में यहाँ पर तट पर हो रहा है। पूरे देश भर में अनेक योजनाएं चल रही हैं, चाहे स्मार्ट सिटी मिशन हो, अमृत योजना हो या वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम हो, स्वनिधि योजना हो, इन सब पर महामंथन हुआ है। और उसके पीछे हेतु है कि हर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को सुविधाएं मिले। उसमें निकाय हमारे अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से निकाय साफ स्वच्छ होंगे, मजबूत होंगे तो विकसित भारत का संकल्प हमारा पूरा होगा।
0: प्रदेश का राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों का छात्र छात्राओं थे अब पाठ्यक्रम का दगड़ी कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI और कोडिंग की बारीकी भी सिखाई जाली। यहाँ कुणे प्राविधिक शिक्षा विभागन कोड योगी और कंप्यूटर एंड लर्न फाउंडेशन का दगड़ी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करयान। ये समझौता का अंतर्गत विद्यार्थियों थे AI का मूलभूत सिद्धांतों, कोडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और यहाँ का व्यवहारिक उपयोगों को निशुल्क प्रशिक्षण दे जालू। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन बोली कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा है आधुनिक रोजगार परक और समय की मांग का अनुरूप बढ़ाना का खातिर निरंतर प्रयास करनी च। उन बोली कि यहाँ का पहल विद्यार्थियों तय नई तकनीकों में हुनरमंद बढ़ाना का दगड़ी ही उनकी समस्या समाधान क्षमता और नवाचार की सोच तय भी विकसित कर ली। उन बताया कि छात्र अपना स्मार्टफोन से अपनी भाषा में बिना कह शुल्क का यू प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते। ये कार्यक्रम का संचालन खुणा अतिरिक्त कंप्यूटर लैब, आधारभूत ढांचा या विशेष शिक्षक

0: प्रशिक्षण की आवश्यकता निभाले। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का तहत चमोली जिला में क्षय रोग उन्मूलन खुणे विशेष अभियान चले जाणो छ। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव गांव जैकी लुखू थे एक्सरे, रक्त जांच, मधुमेह और अन्य जांच करनी छिन। जिला का सभी विकास खंडों में यू अभियान युद्ध स्तर पर चले जाणो छ, ताकि वर्ष 2030 तक भारत है टीबी मुक्त बने। जैसा कि जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहितन बताए कि जिला का 102 उच्च जोखिम वाला गांव में जांच अभियान पूर्व वेगी। वही कर्णप्रयाग विकास खंड में 100 दिवसीय विशेष अभियान का अंतर्गत करीब 50% कार्य पूर्व वेगी।
1: टीबी मुक्त भारत अभियान जो है चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हम जो है टीबी को हमें उन्मूलन करना है, टीबी बीमारी को 2030 तक, तो इसके लिए प्रोग्राम चल रहा है और फील्ड स्तर पर एक्टिव रूप से हो रहा है। इसमें हम जो है आरोग्य शिविर के नाम पे हर गाँव में जो है, जो हमारे गाँव है, इसमें रोटेशन वाइज कैंप लगा रहे हैं, जिसमें एक्सरे, शुगर, हीमोग्लोबिन, बीएमआई की जाँच हो रही है, टीम के द्वारा जा रही है, और गाँव गाँव में हैंड हेल्ड एक्सरे जो होते हैं वो जा रहे हैं।
0: वरिष्ठ टीबी लैब सुपरवाइजर राजदर्शन रावतन बताया कि आरोग्य शिविरों का माध्यम से 14 वर्ष से ज्यादा उम्र का लोगों की जांच करे जाने चाहिए।
2: अभी तो हम लोग जो है हाई रिस्क विलेज जो हमको दिए गए हैं, जो कर्णप्रयाग ब्लॉक में है, वो 69 विलेज हैं, उनको अभी हम कवर कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि हम कैंप लगा रहे हैं। कैंप में जो है बीपी, शुगर और एक्सरे, स्पूटम, सब चीजों की जांच हम लोग वहां पर कर रहे हैं हाई रिस्क विलेज में। और हाई रिस्क विलेज में जो हम लोगों ने टारगेट जो है वो 14 साल से ऊपर के सारे लोगों का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे होता है, पोर्टेबल मशीन वहां पर जाती है, ग्रामीणों का बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उधमसिंह नगर जिला का गांव बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 156 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 1872 आवास को कार्य अंतिम चरण में। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जय किशनन बताया कि जल्द ही यूं आवासों को आर्थिक रूप से कमजोर पात्र लाभार्थियों तक बटे जालो। उन बताया कि अभी तक 185 लाभार्थियों धनराशि जमा करे ली, जबकि 222 लाभार्थियों तक पत्र और दूरभाष का माध्यम से धनराशि जमा कराने को बोले गया।
4: ग्राम बागवाला में ईडब्ल्यूएस के 1872 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये हमारे फ्लैट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। जितने हमारे लाभार्थी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द वो अपना इंस्टॉलमेंट जो भी निर्धारित है, जैसे 3 लाख रुपए प्रति लाभार्थी निर्धारित है, वो अपना इंस्टॉलमेंट दे दें, ताकि हम उनकी रजिस्ट्री और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और इसके अलावा उनको फिजिकल पोजेशन फ्लैट का दे सके। इसके क्रम में हम लोग लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं दूरभाष के माध्यम से एवं पत्र के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द जो लाभार्थी अंश है वो हमें प्राप्त हो और हम आगे की कार्रवाई कर सकें।
0: पौड़ी जिला में स्थानीय उद्यमियों तथा वैश्विक बाजारों से जुड़न और निर्यात गतिविधियों तथा बढ़ावा देने का उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार में आज एक दिवसीय निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यशाला में निर्यात क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों उद्यमियों तथा विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं और मौकों की जानकारी दे। कार्यशाला में केंद्र सरकार का विभिन्न विभागों का अधिकारियों वर्चुअल माध्यम से भाग ले। बागेश्वर जिला का युवाओं तथा वैश्विक रोजगार का अवसरों से जुड़न और विदेशी भाषाओं का प्रति जागरूक करने का उद्देश्य से सेवा योजन विभाग द्वारा जिला मुख्यालय में जापानी भाषा कार्यशाला को आयोजन करेगा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना का तहत आयोजित कार्यशाला में 40 से अधिक छात्र छात्राओं भाग ले। प्रतिभागियों तय जापानी भाषा का महत्व, जापान में वृद्धि रोजगार संभावना और भाषा प्रशिक्षण से मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दे गया। जिला सेवायोजन अधिकारी प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान समय में विदेशी भाषाओं को ज्ञान युवाओं को रोजगार का नए अवसरों का द्वार खोल सक दें।
5: जापान में जो केयर गिवर पद है उसके लिए हमारे पास रोजगार अवसर हैं, तो उसमें भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो आज यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चों को बुलाया गया है और जो इंटरेस्टेड भी हैं बच्चे उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके के रोजगार अवसर हैं, क्या यहाँ पर जो है जापानी भाषा आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे रोजगार से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आज

0: ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था।
1: पिथौरागढ़ का जिलाधिकारी आशीष भटगायन आज जिला का दूरस्थ व सीमांत क्षेत्र स्थित नामिक गांव को भ्रमण का दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय नामिक और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नामिक को निरीक्षण कारी। ये मौका पर उन विद्यालयों में पढ़ने वाला छात्र छात्राओं का दगड़ी बैठी की मध्यान्ह भोजन कारी और भोजन की गुणवत्ता स्वच्छता और पोषण मानकों की देखरेख कारी। जिलाधिकारी ने विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं को विस्तृत जांच कारी। उन विद्यार्थियों से बातचीत करी की उनकी पढ़ाई विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं का बारे में जानकारी मिले। आखिर में मुख्य समाचार एकदा दोबारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल वेन बोली, प्रत्येक शहर सशक्त सुरक्षित और समृद्ध वालू तो भारत विकसित राष्ट्र जरूर बनलू। राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों का छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की बारीकियां सीखला। उधम सिंह नगर जिला का गांव बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना का अंतर्गत बढ़न वालू 1872 आवास को काम अंतिम चरण में और स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजारों से जुड़ने और निर्यात गतिविधियों तहत बढ़ावा देने का उद्देश्य से कोटद्वार में निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला को आयोजन। यहाँ के दगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुनने सभी श्रोतांक आपू दगड़ी दिग्विजय नमस्कार। श्रोताओं, अब रिउड़ सूर्य है गए और रिउड़ में हम देखने की गर्मी बेतहाशा बढ़ने लग रहा है। हालांकि पिछड़ दो चार दिन बटी दिलो होने लग रहा दियो कारण वातावरण में हमारे मौसम में ठंड लौट उन्हें, लेकिन जब घाम पड़ना घाम लय बहुत ज़्यादा पड़ना, यह गर्मी कारण हम देखनों कई बार जो हमारे पशुधन होनी, जो हमारे गोरबच होनी, हमारे बकर होनी, हमारे बल्द होनी, हमारे भैंस होनी, वो बीमार पड़ जानी। तो हम लोगों को गर्मी या मौसम में उन्हें स्वास्थ्य के लिए ध्यान धरना पड़ल, अब वो स्वास्थ्य को ध्यान धरना पड़ल। दगड़ में जो हमारे गोठ में गोरबाछन जदुथान हमारे गोरबाछन सबना हमको ध्यान धरना पड़ल। ख़ास तौर पर हमको यह देखना पड़ल कि जब रति के कई लोगन गोरबा जदि बात नहीं वहाँ देखने की घाम सकर पड़ जाए, 10 बजे बाद घाम बहुत तेज रहें, तो उगत हम लोगों को गोरबा चो गोट बात देनी चाहिए। अगर हम भ्यारा वेग दौड़ में को बात दिया धूल तो दिन मारक घामल हमार गोरबाज होला जाए। दगड़ में उनर खान पान पर ध्यान देना चाहें, पानी की पूरी व्यवस्था करना चाहें। अगर हम उनको टाइम पर घापाण नहीं दिल तो बीमार है जल, और जो दूध देनी हमार गोर छुन हमार भैंस छुन उनर जो दूध छु उ कम है जल। तो यह मौसम में गर्मी के मौसम में हमको ना विशेष ध्यान देना पड़ल। हम अपने यह बात लागू कर सकते हैं, जब घाम सकर पड़ जाए हम पुल सुस्ताई छी और हम ले उदुक भली के काम नहीं कर सकना, तो हमको गोरबाच के शास्त्र पर ध्यान देना पड़ल। उनको खाले भली के खोन पड़ल, रति ब्याह पान देना पड़ल, और यह बात ले ध्यान धरना पड़ल। जब हमको गोट बांधना है तो गोट में हम कई बार की गलती

करनो हमन को यार रेवड़ी दिन छन गर्मी खूब पड़ना है तो हम अपू गोठक दरवाज खोल देंगे। आजकल हम देखने जंगली जानवर छन उलय गौनों में उड़ सके। पिछड़ दिनों जब जंगलों में आग लग रहा थी तो बहुत से गौनों में जंगली जानवर लगातार गौनों आबादी तरफ उड़ना थी तो वह कोई दुर्घटना रह सकी। यह कह लीजिए आप लोगों को जब आप लोग ब्याह के अपू गोर भैंस गोड़ बच्चा बल्द गोड़ बच्चा तो वे द्वार फले कर लगा देना चाहिए। दगड़ में जो हमूल वे खिड़की धर रहा है उकले भले का हमूल देखर चाहे कहें टूटते नहीं रह कह कमजोर ते नहीं रह बेशक हम उनमें जाहे लगा सकन जैल हाउ भितेर ओ और हाउ भितेर आले तो ब्याह कल उनको गर्म नहीं हो। तो यह दो चार बात तक हमको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ल। और अगर कभी हमार गोर भैंस या बकर जो हम जानवर पालना हाँ वो बीमार है जाते हुए हमको जो हमार डॉक्टर छिन गोर बची उनकी फोन कर फिर उनको बुलाना चाहें। कई बार हम देखने कि हमारे आस पास कई लोग यह सुनी जो खुद अपू गोरबा छिन को उपचारित करना खजानी उनर लीजिए खुद घरेलू नुस्खों अपनौन खजानी। कई बार वो बात सही लह जाएगी नुस्ख जो हम उनको दिनों दवाई घर पानी जो दिनों कई बार वो ठीक लह जानी और कई बार हम देखूँ वीक कारण उनका स्वास्थ्य और ख़राब है जाए। तो यह कह लीजिए जो वीक लीजिए सही आदिम छूँ कोणा मतलब डॉक्टर छन उन थी आपको फ़ोन कर भे जानकारी ले सकता और उनको आपको मुहावत ही बुला सकता कि लगता तो फ़ोन है एक फ़ोन कर भेर आप लोग जो आप लोग ना डॉक्टर नियुक्त थे उन्हें जगह बातचीत कर सकता। गर्मी मौसम में जब आप लोग अपन ध्यान धरना है अपन अंतना ध्यान धरना है उधर ध्यान अगर आपको गोरबा चक धर ला तो आप लोग उनको दूध भले का मिलल और जो हमारे गोरबा छन उलह हमारे जो पशुधन छू उ स्वस्थ रहो। तो गर्मी हम अल्लाह बात कर रहे हैं तो अखिल आपको गीत ल सुनना है रिउड़ी कि रिउड़ कस पानी कदू गर्मी ही और यह गीत गर बिना तिवारी आओ सुन यह भला भल कमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, आलिया पुल गीत सुना कलाकार छी दीनानाथ तिवारी जी। हम बखत बखत पर गौनों में जाते रहनु और पिछड़ दिनों हम जरेथ्या ग्राम सभा द्वार सौ दौरहाट ब्लॉक यज्ञ छू। वहाँ हमूल महिला काश्तकार पार्वती देवी जी जगह बातचीत करी और जाने कि द्वार सौ में कसी मडू कसी झुंगर मादिर बुआई करनी और खेत पाड़मी के काम धंधे चलनी, धाना बुआई कसी करनी, उपराव में भी नहीं कि सिंचित में भी नहीं। आओ आपको सुनना है यो सब बातचीत के लिए भी करी गई यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।

श्रोताओं, जैसे हम लोग की हमारी कोशिश रही कि हम लोग आप लोग ने बातचीत दे मनोरंजन न करनो, तो एल आपको सुनने गीत वीक बाद श्वेत संकलित भेंटवार्ता आपको सुनूंगा।

0: श्रोताओं, आल्यापुल कुमाऊं ने गीत सुना। कलाकार छी मोहन सिंह डोलिया और उनर दगड़ी। जस हम थोड़ी देर पहले आपूति कहो कि हम लोग टाइम टाइम पर गौन में जाते रहूँ। पिछड़ दिनों हम लोग जे रचा गौ नाम छी द्वार सु द्वारहाट ब्लॉकों की एक गौ छू। वहाँ हमूल महिला काश्तकार दगे बातचीत करी, जानलो उनर खेती कामावर में या क्षेत्र संकलन भेंटवार्ता में।
1: पूछ रहा द्वारसौ गांव में द्वारहाट ब्लॉक की गाँव छो हमारे देखा है यहाँ महिला काश्तकार पार्वती देवी जी छुन यंथी जानो कि यह ना सारपन खेत पन आजकल के काम हरो। तो पार्वती जी यह बताओ, आजकल अभी चौमास लगने वाले से तो खेत में आप लोगों के काम कर रहा
2: हम खेत में बो रो मोडू बो रो झुमर बो रो धान बो रही और भट घोत मांस तो गोड़े हरे आजकल गुड़ो हरो बानरों ले उजाड़ है आप बुने ला रूँ पे हल्के फुल्के थोड़ा बहुत करने ला रूँ खेत पैटी।
1: आप लोग कहो कि मटू बेरो झुंगर बेरो और दगड़ में धान लगा रहा, तो मटू और जो झुंगर आप लोग बेचा तो यह एक बुआई के तैयारी कर छा और यह एक बी इंतजाम कसी कर छा।
2: बी तो हम झुंगर को मटू घर धरून धान वाले घर धरून तो पहले हम मोह खितनु मोह खिले फिर बाए बेरा फिर बबेर दोबार हमको बीनू तो हौद का हम भट घोत मांस ये चीले बीनू दगड़ा
1: ये जी बेचा। हम देख लो कई जगह जो धान ही धान में कई उपराव में धान हो कुछ दी बीनी और कई जगह धान को रोप लगोना परंपरा से सोमेश्वर इलाके में देखना धान को रोप लगोनी। तो आप लोग ना ये जो द्वार से जाना खूब खेत हैं भल दिखने की, तो यहाँ आप लोग कैसे लगो धान का?
2: हम तो ऊपर आओ बुना हमारे वहाँ तलाव जमीन ही थी, हम उसके बिनु धान को बादशाह का पानी हूँ धान हान जेल हो मडू माजे धान सब दगड़ दगड़े बिनु जो खेत में जो हुई हो खेत में वो भी चीज़ बिनु और हमारे वहाँ कोई सिंचाई हिचाई के नहीं थी।
1: अच्छा, जैसे आप लोग कहो जो खेत में जो फसलें उकड़े आप लोग बेचा तो यह कैसे निर्धारण हो कि हम यो खेत में धान लगूल यो खेत में झूंगर लगूल या यो खेत में हम लोग मडू लगूल? हर साल यन में बदलाव हो कि जो खेत में हर साल मडुए बेचा में हर साल मडुआ का मडुआ बुआई कर छा?
2: ना ना उमा हम झुमर बोजनो और दूसरा साल में मडु बीनो और धान खेत में धाने बीनो उनमें मडु हडु कमा हूँ धाने बीनो और जो शिमारा जाए खेत हुई हमारे उनमें भट हट बेचनो।
1: अच्छा, भट बेचा हम देख लो कि घोगले कई जग बीनी तो आप लोग घोगन के लिए बेचा?
2: घागले बुनो बानर खजीनी बीनू से ही महावन घागले बुनो और साप आत सर बुनो आज का जो मरचे हरचे साग कर काकाड़ा के हुई हूँ बानर खजनी बाग लगू ना चू मम
1: यह कहो जैसे आप लोग कहो कि नहीं आप लोग भट लगू छा जो भटक जाओ आप लोग बुआई कर छा तो हम देख लू सोयाबीन ने बहुत जग बीनी। सोयाबीन और भट में के अंतर हूँ क्या पैदावार भल ही और क्या बाजार में बेचाण में क्या डबल भल मिलनी?
2: पैदावार तो सोयाबीन भलूँ है गया जब और एक एक जैसे भट बीनू से सोयाबीन बीनू अब बाजार में क्या मिलूँ बाजार में घर पर ना हूँ आजकल बाजार बेचने जाना कम हूँ बानर हानर खजीनी है होना सुन मुमड़ा में खर्च लाए।
1: अच्छा, यह के अलावा जैसे हम बहुत से जाग में देख लूँ हम धाना का मडुआ गुड़ाई बात करी तो यह बताओ कि गुड़ाई कदू कदू बार ही जस मडु में दीवार ही कि मादर मिला या झुंगर मिला दीवार गुड़ाई कर छ आप लोग?
2: हो इस सब चीज़ में दीवार करनो ए बार धनिया खितनो दोबार गोड़नो और धानों में निखन धनिया धानों में दीवार हथल गोड़नो मोड़ में धनिया खिनो झुंगर में खितनो धनिया उसी कम खिनो झुंगर में धनिया मोड़ में खितनो धनिया।
1: अच्छा, आप लोग कहो कि ये में आप लोग देने वाले खिंचा तो गुड़ाई कार्य एल आप लोग ने पूरे गाँव की गुड़ाई अखिल होने जारी रोल या आय कर ला गुड़ाई काम?
2: ना ना चल लो आई तो चली रहो शुरुआत है गोड़ने आप शुरुआत सुई ए बेरा गोड़ पा हरियाव तक जो गोड़ो हम
1: तो यह बार जो टाइम टाइम हम देखना पिछले दो चार दिन बटी जो दियो हो ना तो यह दियोल आप लोग ना जो खेती आप लोग करना है ये में फायद हो लिया दियोल?
2: ओहो फैद तो हुए रहो जम गयो सब न तो जमने न घाम पड़ना जम गो सब गोड़ाई शुरू है गए आप गोड़ नू।
1: अच्छा, एल आप लोग यह बुआई कर ली आप जैसे यह को काटन भय लवण भय वो कम हैण में आप लोग ने जो फसल जो एल टाइम में बो रहे तैयार है जल
2: वो हमार भदो मत हमार झुमर पाए जा और धान ले पाए जानी मोडू मानता असोज में पाकू मोडू को जरा देर में बुनो असोज में पाकू भट मोडू गहत होहत वो असोज में हुई
1: यह के अलावा हम देख लू कि अब जब असोज में घाक कटने का काम हो आप लोग ने वहाँ तो घाक लीजिए आप लोग ने जो मांग कुन्नी कही जाए अलग से मांग छिन कि घास जो आप लोग ने एल खेत में बुआई कर रखी यह इचाओ निशाओ पे घाव खूब
2: हो इचाओ निशाओ हूँ मांग ले छिन हो इचाओ निशाओ तो हम खेतों दगड़ी काटन और मांग हम बाद में काटन घा काची तक
1: अच्छा कार्तिक तक घा काट छा तो एल हम जैसे गुरबाचन बात करूँ तो एल गुरबाचन में जो हरी चारा कई जगह बात करी तो हरी चारा में के चीज खाऊ छा कामटी को इंतजाम कर छा
2: खेतु बने हजा हमर तेरा निशा खेतु बने घा हजा तो कुणी काटनो कुणी खोनो हो न तर आप चमा लागो आप खेतु बने हजा
1: यह अलावा जैसे हम देख लू कई जगह बितैण है गए खड़क है गए या भिकू है गए यह एक जो सौंग होनी उला गुरबाचन को खाऊनी तो आप लोग ना गौ मिला या गुरबाचन को खाऊनी
2: ना ना हमारे वहाँ नहुन बिताने नहुन खड़ग ले नहुन के नहुन भय खाऊनी हाँ भेकू हूँ कोई कोई बोर्ड और बिताने खड़ग कम हूँ
1: तो आप लोग ना जंगों में कोई चीज़ बोर्ड होनी सकर
2: बाजा पेड़ सन और बुरुषा पेड़ सन शौल है और झेड़ी झाड़ी सब चीज़ हूँ चार हार गुरबाचा हूँ
1: तो आप लोग हमारे तो बातचीत करिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: श्रोताओं अलापुर सुनी यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता और अब सुनू यो गीत।

शांति साथ गई। यही गीत गए हमारे आज का ग्राम जगत कार्यक्रम इलाका संपन्न हूँ। भूलू उपलब्ध गए फिर भेंट होली उमिहल रोजा काचारी खेती विचार बातचीत दगड़मी मनोरंजन जी गीत एल आज्ञा दियो नमस्कार।

7:30 होने को है। कुछ ही देर बाद कुमाऊनी में उत्तराखंड की प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उपदगड़ मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषदक 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल है को हर शहर सशक्त सुरक्षित और समृद्ध हो तो भारत विकसित राष्ट्र जरूर बनल। राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग बारीकी सीखल। उधम सिंह नगर जिला ग्राम बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1872 आवासों काम अंतिम चरण में और स्थानीय उद्यमियों के वैश्विक बाजारों हेबे जोड़न और निर्यात गतिविधियों के बढ़ावा देने के उद्देश्य कोटद्वारम निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश अखिल भारतीय महापौर परिषदक 117वीं कार्यकारी समिति बैठक में भाग लियो। यो मौके पर उन्होंने 29,78,00,000 रुपए की लागत वाल 3 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारतक शहरी विकासक क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करी जा रही। उत्तराखंड में स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत मिशन जस विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फैद हर नागरिक के दी जा रो। उन्होंने कहा कि हर शहर सशक्त सुरक्षित और समृद्ध हो तो भारत विकसित राष्ट्र जरूर बनल।
1: मेयर काउंसिल का सम्मेलन पूरे देश भर का आज योग नगरी ऋषिकेश में मां गंगा के सानिध्य में यहां पर तट पर हो रहा है। देश भर में अनेक योजनाएं चल रही हैं, चाहे स्मार्ट सिटी मिशन हो, अमृत योजना हो या वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम हो, स्वनिधि योजना हो, इन सब पर महामंथन हुआ है। और उसके पीछे हेतु है कि हर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को सुविधाएं मिले। उसमें निकाय हमारे अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से निकाय साफ स्वच्छ होंगे, मजबूत होंगे तो विकसित भारत का संकल्प हमारा पूरा होगा।
0: प्रदेशक राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों छात्र छात्राओं के अब पाठ्यक्रमक दगड़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और कोडिंगक बारीकी लय सिखाई जाल। यह लीजिए प्राविधिक शिक्षा विभागल कोड योगी और कंप्यूटर एंड लर्न फाउंडेशनक दगड़ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही। यो समझौतक तहत स्कूली नातिनों के AI मूलभूत सिद्धांतों, कोडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और यह व्यवहारिक उपयोगक निःशुल्क प्रशिक्षण दी जाल। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल को कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा के आधुनिक रोजगार परक और बखतक मांगक अनुरूप बनाना लीजिए लगातार प्रयास कर रहे। उन्होंने को कि यह पहल विद्यार्थियों के नई तकनीकों में दक्ष बनाना दगड़ उन्हें समस्याओं समाधान क्षमता और नवाचार सोच के लिए विकसित करे। उन्होंने बताया कि छात्र अपन स्मार्टफोनल अपन भाषा में बिना कोई शुल्कक यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकनी। यह कार्यक्रमक संचालनक लीजिए अतिरिक्त कंप्यूटर लैब, आधारभूत ढांचा, विशेष शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानक तहत चमोली जिले में क्षय रोग उन्मूलनक लीजिए विशेष अभियान चलाए जा रो। स्वास्थ्य विभागक टीम गोंगो जबेर मैसूक एक्सरे, रक्त जांच, मधुमेह और अन्य जांच कर रही। जिलक सभी विकास खंडों में यह अभियान युद्ध स्तर पर संचालित करी जा रो ताकि साल 2030 तक भारत के टीबी मुक्त बनाई जा सको। जिल क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहितल बता कि जिलक 102 उच्च जोखिम वाल गोनों में जांच अभियान पूर है गो। वहीं कर्णप्रयाग विकास खंड में 100 दिनी विशेष अभियानक तहत करीब 50% काम पूर है गो।
2: टीबी मुक्त भारत अभियान जो है चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हम जो है टीबी को हमें उन्मूलन करना है, टीबी बीमारी को 2030 तक, तो इसके लिए प्रोग्राम चल रहा है और फील्ड स्तर पर एक्टिव रूप से हो रहा है। इसमें हम जो है आरोग्य शिविर के नाम पे हर गाँव में जो है, जो हमारे गाँव है, इसमें रोटेशन वाइज कैंप लगा रहे हैं जिसमें एक्सरे, शुगर, हीमोग्लोबिन, BMI की जाँच हो रही है, टीम के द्वारा जा रही है और गाँव में हैंड हेल्ड एक्सरे जो होते हैं वो जा रहे हैं।
0: वरिष्ठ टीबी लैब सुपरवाइजर राजदर्शन रावतल बता कि आरोग्य शिविरों के माध्यम 14 साल है भी ज्यादा उम्र वाले लोगों की जांच करी जा रहे।
3: अभी तो हम लोग जो है हाई रिस्क प्लेस जो हमको दिए गए हैं जो कर्णप्रयाग ब्लॉक में है वो 69 विलेज हैं उनको अभी हम कवर कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि हम कैंप लगा रहे हैं, कैंप में जो है बीपी, शुगर और एक्सरे, स्पूटम, सब चीजों की जांच हम लोग वहां पर कर रहे हैं हाई रिस्क विलेज में। और हाई रिस्क विलेज में जो हम लोगों ने टारगेट जो है वो 14 साल से ऊपर के सारे लोगों का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे होता है, पोर्टेबल मशीन वहां पर जाती है, ग्रामीणों का बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है।
0: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। उधम सिंह नगर जिला ग्राम बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 156 करोड़ रुपए की लागत बन रही 1872 आवासों काम अंतिम चरण में छू। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष जय किशनल बता कि जल्दी इन आवासों के आर्थिक रूपल कमजोर पात्र लाभार्थियों के आवंटित करी जल। उन्होंने बताया कि आज तक 185 लाभार्थियों धनराशि जमा कर है, जबकि 222 लाभार्थियों के पत्र और दूरभाषक माध्यम धनराशि जमा कराने के लिए कई जेरो।
4: ग्राम बागवाला में EWS के 1872 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये हमारे फ्लैट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। जितने हमारे लाभार्थी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द वो अपना इंस्टॉलमेंट जो भी निर्धारित है, जैसे 3 लाख रुपए प्रति लाभार्थी निर्धारित है, वो अपना इंस्टॉलमेंट दे दें ताकि हम उनकी रजिस्ट्री और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और इसके अलावा उनको फिजिकल पोजेशन फ्लैट का दे सके। इसके क्रम में हम लोग लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं दूरभाष के माध्यम से एवं पत्र के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द जो लाभार्थी अंश है वो हमें प्राप्त हो और हम आगे की कार्रवाई कर सकें।
0: पौड़ी जिले में स्थानीय उद्यमियों के वैश्विक बाजारों है जोड़न और निर्यात गतिविधियों के बढ़ावा देने का उद्देश्य जिला उद्योग केंद्र कोटद्वारा में आज एक दिनी निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला आयोजित करी गई। कार्यशाला में निर्यात क्षेत्र है जुड़ी विशेषज्ञों उद्यमों के विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं और अवसरों की जानकारी दी। कार्यशाला में केंद्र सरकार विभिन्न विभागों के अधिकारियों वर्चुअल माध्यम भाग लियो। कार्यशाला का मुख्य आकर्षण निर्यात हेल्प डेस्क उद्घाटन रहो। अधिकारियों के अनुसार यह जिले में अपूर्ण तरीका पली पहल छू। जेल निर्यातकों और निर्यातम रुचि रखने वाले उद्यमियों के जरूरी मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता इक्के जाग पर मिल सके। बक्सर जिला जवान नंतिनों के वैश्विक रोजगार अवसरों बटी जोड़नक और विदेशी भाषाओं प्रति जागरूक करने का उद्देश्य सेवा योजन विभाग द्वारा जिला मुख्यालय में जापानी भाषा कार्यशाला का आयोजन करी गो। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में 40 से भी ज्यादा स्कूली नंतिनों भाग लो। प्रतिभागियों के जापानी भाषा का महत्व, जापान में बढ़ती रोजगार संभावनाओं और भाषा प्रशिक्षण मिलने वाले फायदे बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला सेवा योजन अधिकारी प्रवीण गोस्वामी बता कि एल बखतम विदेशी भाषाओं ज्ञान युवाओं के लिए रोजगारक नए अवसरों द्वार खोल सकूं।
5: जापान में जो केयर गिवर पद है उसके लिए हमारे पास रोजगार अवसर हैं, तो उसमें भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो आज यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बच्चों को बुलाया गया है और जो इंटरेस्टेड भी हैं बच्चे उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके के रोजगार अवसर हैं, क्या यहाँ पर जो है जापानी भाषा आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे रोजगार से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था।
0: पिथौरगढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाईल आज जिला दूरस्थ और सीमांत क्षेत्र स्थित नामिक गांव भ्रमण के दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय नामिक और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नामिक का निरीक्षण करो। यह मौके पर उन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाले नातिनों को दगड़ भय बेर मध्यान्ह भोजन करो और भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पोषण मानकों का निरीक्षण करो। जिलाधिकारी विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं विस्तृत जायजा लियो। उन्होंने नातिनों हेबे बात कर बेर उन्हें पढ़ाई, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और भविष्य योजनाओं बारे में जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषदक 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल है। को हर शहर सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध हल तो भारत विकसित राष्ट्र जरूर बनल। राजकीय पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों

0: छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग बारीकी सीखल। उधम सिंह नगर जिला ग्राम बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 1872 आवासों काम अंतिम चरण में और स्थानीय उद्यमियों के वैश्विक बाजार है जोड़न और निर्यात गतिविधियों का बढ़ावा देने के उद्देश्य कोटद्वारम निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय हो चुका है फिल्म संगीत का।

कार्यक्रम का की शुरुआत कर रहे हैं अलीशा चिनॉय और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म इश्क विश्क के इस गीत के साथ। गीत लिखा है समीर ने और सरगम में बांधा है अनु मलिक ने।

अभी आपने सुना इश्क विश्क फिल्म का ये गीत अलीशा चुनौई और कुमार सानू की आवाज़ों में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में समीर के लिखे सुनिधि चौहान और के की आवाज़ों में फिल्म दिल मांगे मोर का ये गीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए आप सुनिए समीर की कलम से लिखे नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में लीजिए अब सुनिए गुरु फिल्म का ये गीत अलका याग्निक, हरिहरन और असलम मोहम्मद की आवाज़ों में। गीत के बोल गुलजार ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

गुरु फिल्म के इस गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए लोक गाथा नल दमयंती का अंतिम व 11वां भाग। कलाकार हैं नारायण राम व साथी।

0: ସର୍ବଣ ନାଗ ସମ୍ରଣ କର ପିଲ
1: ପିଆରେ ଅସ୍ତ୍ର ଗୀତ ରସାରିଏ ରାହ ଗୋ।

0: ये नारी पुरुषा तुमने पारो तो
1: राधा जग जब हुआ घनी गो घाम
0: नारी
1: पुरुषा तुमने पारो सो स्नान
2: राजा नला
1: सुभाष माता राजा भीम के दरबार का दरबार बोलो तेरा सुभाष माता
2: राजा नदी बाहुसी
1: धीमा
0: का

चिरंजीवा है जया तुम है जया यमारा। दिल जमाई तुम मर गया

बाहु काका भीष्म किया वो राजा रे नला जा बाहु तो क्यों राजा वैसी क्या मैं नहीं जानी आई भला गए

या तो अमृतगढ़ पास में को खेल खेल या जो सो धनुष में डोरी चढ़ा चर पाप फल चुके या भोगल पड़ोल तब पुष्कर कुना व्यर्थ बातन के निबुलाय तिल जो सो वनवास में खूब धन ले कमासो सकुशल लो जाग से तो ले बड़ो हो भाग्य वेरी गतार पहली तरह धन दौलत।

करा अब दमयंती ऊपर आंख उठाए से न देख सकले तू। आज बेटी तू दमयंती सेवक भय लेकिन चर जो निर्दयी है तू मैं तुके जीवन दान दिखू चर राज पापी के लौटा दिखू गुणी गुणी शीतलिका टिणी सवर्ष जीवित रे भया पुष्करा।

सेना भेजाले कुंडिनपुर में मेरे लो लश्कर ए सेनापति हो जो वैद नियंत्री कह लिया नर नंतन कह लिया हो अब ताढ़ने के बड़वा विनायक बटी लाग परो देश उसे राजपाट आज हो लो तो निषेधाकार दे ऐसा

अभी आप सुन रहे थे लोक गाथा नल दमयंती का 11वां अंतिम भाग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से ही बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को है। कुछ ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स में रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गद्दे ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर प्रज्ञानानंदा ने मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को और महिला टीम ने सिंगापुर को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने आज चीन के वेंग होंगयांग को 8-21, 22-20, 21-15 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पोहान को 21-14, 21-14 से मात दी। एचएस प्रणय को आयरलैंड के नहत गुएन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशियाई जोड़ी कांग काई जिंग और आरोन ताई के खिलाफ पहले ही सेट में कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को जापान की नोजोमी ओकुहारा से 21-15, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर ओपन जीतने के बाद भारतीय प्रशंसकों को सात्विक चिराग से उम्मीदें थी, लेकिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अब सबकी निगाहें पीवी सिंधु पर होगी, जहां वो वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कल मुकाबला करती नजर आएंगी। और अब रुख कर लेते हैं शतरंज की ओर। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल बाजी में उन्हें दूसरी बार हराया और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहले भारतीय चैंपियन बनने की अपनी दावेदारी को मजबूत किया।
1: प्रज्ञानंदा इस वर्ष क्लासिकल बाजी में कार्लसन को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलीट डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में उन्होंने पहले भी कार्लसन को क्लासिकल बाजी में हराया था। इस जीत से 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा के 12 अंक हो गए हैं और वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इस हार से कार्लसन की 8वीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अब केवल 2 राउंड रह गए हैं और ऐसे में मौजूदा चैंपियन कार्लसन के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा। कार्लसन का यह अभियान उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें उन्हें 4 बार क्लासिकल बाजी में हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा 9वें दौर में काले मुहरों से भारत के ही गुकेश से खेलेंगे। इस बीच अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आर्मागेडन टाई ब्रेक में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया, जिससे उनके अंक 14 हो गए हैं। फ्रांस के फिरोजा ने क्लासिकल मुकाबले में गुकेश को हराकर 13 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। विश्व चैंपियन डी गुकेश की खिताब जीतने की उम्मीदें 8वें दौर में फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा से एक और करारी हार के बाद खत्म हो गयी। वे 8 अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले पायदान पर आ गए हैं। 2024 में विश्व चैंपियन बनने के बाद गुकेश का खराब प्रदर्शन जारी है। इस टूर्नामेंट में गुकेश की क्लासिकल बाजी में ये तीसरी हार थी। इससे उनकी इस साल के आखिर में उज्बेकिस्तान के चैलेंजर जावखर सिंदारोव के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप के अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी को भी झटका लगा है। उधर महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबायोवा ने दिव्या देशमुख को क्लासिकल बाजी में हराकर खिताब की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन की झू जिनर ने भी क्लासिकल में जीत हासिल की। उन्होंने मौजूदा

0: का महिला विश्व चैंपियन जू वेंजुन को हराकर 10 अंक के साथ दिव्या की बराबरी कर ली है। मौजूदा चैंपियन अन्ना मुजिचुक और कोनेरू हम्पी ने अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ किया। इसके बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक भी ड्रॉ रहने से हम्पी को बोनस अंक मिल गया क्योंकि वे काले मोहरों से खेल रही थी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: पर अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां पुरुष और महिला वर्ग दोनों में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला अंडर 18 एशिया कप हॉकी के पुल ए के अंतिम मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराया। भारत प्रतियोगिता में पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है।
2: भारत ने सिंगापुर के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया। भारत के कम 10 खिलाड़ियों ने गोल किए, जिनमें नौशीन नाज सबसे आगे रहीं। उन्होंने 8वें, 13वें, 17वें, 18वें, 40वें, 92वें, 98वें मिनट में गोल दागकर कुल 7 गोल किए। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही गीताश्री नामी ने 5 गोल किए, जबकि कप्तान स्वीटी कुजुर ने 4 गोल का योगदान दिया। प्रियंका मिज ने 22वें, 37वें, 53वें मिनट में गोल दागकर हैट्रिक बनाई। दिया 27वें, नैन्सी सरोहा 36वें, श्रुति कुमारी 40वें, पुष्पा मांझी 47वें, रश्मीन कौर 47वें और संदीपा कुमारी ने 91वें मिनट में गोल करके अपना अहम योगदान दिया। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। कप्तान स्वीटी ने दूसरे ही मिनट में पहला गोल दागा। नौशीन ने 8वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद गीताश्री और नौशीन ने 13वें मिनट में एक एक गोल करके भारत की पकड़ मजबूत कर दी। भारतीय टीम ने इसके बाद भी गोल करना जारी रखा और अपनी सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की। पूल ए में भारत ने मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर को हराकर 9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूल ए मैच के मुकाबले में आज भारत ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराया। भारत ने कजाकिस्तान, कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत के साथ अपने पूल मैच खत्म किए, जबकि मेजबान जापान से उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे टीम को 4 मैच में 9 अंक मिले। भारत शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। रुख कर लेते हैं प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 और 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता आर्याना सबालेंका आज क्वार्टर फाइनल में डायना साइडर के खिलाफ 3-6, 7-5, 6-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अलेक्जेंडर ने कल राफेल जोडर को 7-6, 6-1, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में ज्वेरेव का मुकाबला मेंसिक से होगा। आइए जानते हैं क्वार्टर फाइनल में कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
3: पिछले साल फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव को कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर पहले सेट में 19 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी। ज्वेरेव ने 2-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 2 घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले को अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में और इस सीजन में क्ले कोर्ट पर 19 जीत के साथ सबसे आगे रहने के बावजूद 19 वर्षीय स्पेनिश ने पहले सेट में सर्व तोड़कर 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन ज्वेरेव ने अगले 6 में से 5 गेम जीतकर मैच को टाई ब्रेक तक पहुंचा दिया। इसके बाद ज्वेरेव तेजी से 3-3 की बराबरी पर पहुंचे और फिर लगातार 4 पॉइंट्स जीतकर सेट अपने नाम कर लिया। वहां से ज्वेरेव पूरी तरह हावी हो गए। अपनी पहली सर्व पर 71% पॉइंट्स जीतकर और जोरदार फोरहैंड लगाते हुए उन्होंने दूसरे सेट में 1-1 की बराबरी से लगातार 7 गेम जीते और 2 सेट की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस साल ज्वेरेव ने यहां 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 सेट गवाया है और यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो ज्वेरेव पहले ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करने के प्रबल दावेदार हैं। उधर भारत के एन श्रीराम बालाजी और ब्राजील के उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन से 3-6, 4-6 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह 20 और 21 जून को चीन के सांग्यू में भारत की 29 सदस्य टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम 6 रिले स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। एशियाई रिले चैंपियनशिप का तीसरा सत्र चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
0: होने वाली एशियाई रिले चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। प्रतियोगिता

0: में पुरुषों की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले तथा महिलाओं की 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय टीम मिक्स्ड 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेगी। भारतीय टीम में पुरुषों के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में तीर्थेश पी शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस संतोष, रिंस जोसेफ, सूरज अलगर राजा, मोहित कुमार, बरात श्रीधर हिस्सा लेंगे। वहीं 4x100 मीटर और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में अनिमेश कुजूर, गुरिंदर वीर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव प्रमोद गौरव, राहुल कुमार, गणेश कुमार, सेंथिल कुमार, तमिल रासु प्रतिस्पर्धा करेंगे। जबकि महिलाओं के 4x400 मीटर और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में रशदीप कौर, पुअम्मा एमआर, अंसा बाबू, विजय कुमारी जी के, सलोनी नागर, नीरू पाठक, सुभा वी, गौरी नंदना चुनौती पेश करेंगी। और 4x100 मीटर मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, अभिनया राजराजन दमखम दिखाएंगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की युवा पीढ़ी से साइकिल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा, आज देश की युवा शक्ति से साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।
2: मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है।
1: डॉक्टर मांडविया ने साइकिलिंग को पर्यावरण संरक्षण का सबसे टिकाऊ माध्यम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी जिक्र किया।
2: जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आज ग्लोबल चैलेंजेस के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को संडे ऑन साइकिल जैसे अभियानों ने नई गति दी है। देश भर के लाखों युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
1: और अब बात क्रिकेट की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी टीम महिला T20 विश्व कप में अपनी अंतिम 11 को लेकर काफी स्पष्ट है और वे इससे पहले दो अभ्यास मैच का उपयोग कुछ और संयोजन आजमाने तथा राधा यादव और भारती फुलमाली जैसे खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए करेंगी। भारत महिला T20 विश्व कप पहला खिताब जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद से इंग्लैंड पहुंचा है, लेकिन वे मेजबान इंग्लैंड से 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2-1 से हार गया, जिससे ICC के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले उनकी तैयारियों को झटका लगा। स्मृति मानधना ने तीसरी T20 के बाद कहा कि इंग्लैंड में सीरीज खेलना जहां हमें विश्व कप खेलना है तैयारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। विश्व कप में सलामी बल्लेबाजों की भूमिका बेहद अहम होगी।
3: Coming early and playing a series in England, going to play a World Cup, definitely in terms of the preparations, definitely extremely good to do that. But yeah, again, taking back, definitely I think me and Shefali both have a huge role to play going forward, and we'll take it in our stride again with our bowling. Again, we'll go back to the drawing board, see which options can be better. We did that before this series. Maybe we can go back again, and now I think we know that these conditions, what balls to be bowled. I think those 2-3 things, I mean, I'm sure that it's going to help a lot of our players.
1: भारत आगामी विश्व कप में अपना पहला मैच 14 जून को बर्मिंगम में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलॉन्ग दी कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।

0: बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतिव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
4: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
6: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, जो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
4: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
8: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम इंद्रधनुष सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त दीप प्रकाश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, अब सुनिए हम हो गए आपकी फिल्म का ये गीत अलका याग्निक।

प्रेम संगीत कार्यक्रम इंद्रधनुष का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म गुरु से। आवाज है यार रहमान और चिन्मय जी। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है यार रहमान ने।

अभी आपने सुना फिल्म गुरु का गीत। कार्यक्रम इंद्रधनुष के समापन में आइए अब सुनते हैं फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये गीत तौसीफ अख्तर की आवाज़ में। बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत से सजाया है नदीम शिवण ने।

तौसीफ अख्तर के गाए फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के इस गीत के साथ हमारा आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। अपनी रेडियो मित्र दीप प्रकाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 को होने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर GPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मॉनसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर है।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ISR इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषण क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए जमीन के अंदर जाए या हमारी फसल को मिले और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है क्या पूर्वानुमान है उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है कब बोना है कैसे बोना है बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना उपचार कैसे करना है और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
3: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का जिसमें प्लस माइनस 4% की छोटी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94-106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण वैली भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट करते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और

0: को पूरा, कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहाँ पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहाँ पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
0: अगर धान की सब क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है, तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उसको ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहाँ पानी की संभावना बहुत कम है तो वहाँ हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के, या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के पूंछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्था पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात किया, मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी क्लास से तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी,
0: करती
1: बिल्कुल
0: है,
1: जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारे सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो

0: जाता है भूमध्य रेखा महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारत वर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारत वर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत रहस्य सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशन है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एल नीनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशन डेवलप करने के गाइडेंस जो है सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन पौधे काफ़ी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफ़ी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का व्यवस्था रहता है। और निराई गुड़ाई समय को होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरीगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज़्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूँगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फाल्स आदमी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है, तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लें।

0: करेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है खासकर मास मीडिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: डिपा
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमोसफेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमोसफेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की वाटर वेपर की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशन होती है ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है?
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है तो सपने वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सारी संसाधन होने चाहिए। तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई हैं जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो उस सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया। अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है जब कोई

0: भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले एक दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
1: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सेटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, उसके वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
0: जी।
1: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जाए।
0: जी हाँ बिल्कुल, मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मानसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा। ये सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में।

पहले इसकी ट्रांसलेशन कर दूं। उनके जमाल रुख पे, उनके रोशन चेहरे पे, जमाल रुख रोशन चेहरा, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके रोशन चेहरे पे उन्हीं की रोशनी थी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह का गाया ये नगमा।
3: आपकी तालियों के जोश को सुनकर मुझे एक लतीफा याद आ रहा है। एक गाने वाले थे, उनके पड़ोसी को भी एक दिन जोश आ गया, तो वो उनके घर आए और बोलने लगे कि साहब आपका बाजा चाहिए। थोड़ी देर के बाद उनकी बीवी आई और बोली कि आपका तबला भी चाहिए। तो जब वो जाने वाली थी तो गाने वाले ने पूछा कि साहब आपके घर में कोई महफिल है या कोई गाने का प्रोग्राम है। वो बोली नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम जरा जल्दी सोना चाहते हैं आज। अब लीजिए पंजाबी के इस दौर से निकलें और फिर से आ जाएं गजल के दौर में। बहुत सी फरमाइशें हैं, सबसे पहले दो गजलें पेश कर रहे हैं, दोनों हम रदीफ गजलें हैं। चित्रा जी गा रही हैं सुदर्शन फाकर की गजल और मैं गा रहा हूं ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के नौ केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए अब सुनिए गुलाम अली का गाया ये नगमा।

सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम पेशकश में लीजिए, अब सुनिए भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले का गाया ये नगमा।

भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले के गाए इस नगमे के साथ हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं चलते चलते फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ है उदित नारायण और अलका याग्निक की, धुन तैयार की है जावेद अख्तर ने, और माफ़ कीजिएगा गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और धुन तैयार की है आदेश श्रीवास्तव और जतिन ललित ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक, सोनू निगम, सुखविंदर और जसविंदर की आवाजों में फिल्म जानवर का ये गीत। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म जानवर का ये गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म कोई मिल गया का ये गीत। बोल इब्राहिम अश्की के हैं और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म चलते चलते का ये गीत अभिजीत की आवाज़ में। गीत की धुन तैयार की है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजा है आदेश श्रीवास्तव और जतिन ललित ने।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी के लिखे ए आर रहमान के संगीत से सजे आशा भोसले ऋचा शर्मा आदित्य नारायण की आवाज़ों में फिल्म ताल का ये गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में लीजिए आप सुनिए तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल समीर के हैं और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

0: अलका याग्निक के गाय संगीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर

0: और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: on various aspects of welfare and employment, including enhancing awareness, promoting economic empowerment, strengthening financial inclusion, improving access to essential services, and ensuring effective grievance redressal mechanisms. And in badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Garde defeated Chinese Taipei's Yang Fu Swan and Hu Ling Fang. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप News On AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन और अंतिम सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के साथ कल प्रातः 5:53 पर एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।